आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 और 10 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को हैं समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक

0: को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का वंदन। दिन की शुरुआत हो या किसी नवीन कार्य की शुरुआत, प्रथम पूज्य हैं हमारे गणपति बप्पा, क्योंकि उनको आशीर्वाद है कि जब भी हम उनकी आराधना से, उनके प्रथम बंधन से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें यथोचित सफलता अवश्य मिलती है, हमारा कार्य निर्विघ्न होता है। तो आइए हम भी आज के दिन की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा की वंदना से ही।

जिस प्रभु की आराधना से, जिनकी वंदना से हमारा मन इतना शांत हो जाता है, मस्तिष्क की सारी उद्विग्नता शांत हो जाती है, एक अजीब सी शांति सुख की अनुभूति होती है, मन की रफ्तार को लगाम लगती है। उन ईश्वर का वरदहस्त जिसके सर पर हो, उस मनुष्य को भला फिर किस तरह की पीड़ा हो सकती है। ईश्वर सर्वत्र हैं, लेकिन उनकी अनुभूति पाने के लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलें। प्राचीन काल से ही तमाम भक्त लोगों ने ईश्वर से अनेक संबंध स्थापित कर उनकी आराधना की है। कोई सखा बना तो कोई प्रेयसी बनी, कोई दास बना। जिसने जिस रूप में ईश्वर की आराधना की, ईश्वर ने उसी अनुभूति के साथ उसका साथ दिया और उसके विश्वास को कभी डिगने नहीं दिया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
3: संदेश के बाद आपका पुनः स्वागत है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। श्रोताओं, हम प्रतिदिन एक कार्ययोजना बनाते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य उद्देश्य तय करते हैं और उसी योजना अनुसार अपना कार्य संपादित करते हैं।

प्रतिदिन हम निर्धारित करते हैं कि आज हमें ये काम करना है, हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए अमुक कार्य करना है। लेकिन कभी कभी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं कि हमारे सारे सपने बिखर कर रह जाते हैं। हम अनेक जगहों पर याचनाएं करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे पल पल के दायित्वों का लेखा जोखा अपने पास रखा हुआ है। ये प्रकृति जो हमें बिना मांगे प्राणवायु देती है, हमें अमृत स्वरूप पानी के स्रोत देती है, हमारे लिए अन्न का उत्पादन करती है। यहां पर अगर कोई देने में सक्षम है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर का बनाया पुतला, भला एक पुतला दूसरे पुतले को क्या दे सकता है? कुछ ऐसा ही जो यही नष्ट हो जाना है। लेकिन यदि ईश्वर का सानिध्य मिल गया, हमें उनसे उनकी भक्ति का आशीर्वाद मिल गया, तो फिर वो हमारे साथ इस यात्रा के बाद भी चलती है और हमें उन परमपिता परमेश्वर के सानिध्य की प्राप्ति होती है, हमें उनके श्रीचरणों में स्थान मिलता है और मनुष्य माया मोह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो याचना करनी है तो उस परमपिता परमेश्वर से की जाए।

ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमें सन्मार्ग पर लेकर चलें, अपनी भक्ति का दान दें। इसी कामना के साथ आज की आराधना बस यहीं तक। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। विचार बिंदु के अंतर्गत लीजिए सुनिए विक्रम साराभाई के विचार।
1: भारत के अणुशक्ति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और आधुनिक भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को लक्ष्मी और सरस्वती का भी वरदान प्राप्त था। उनका विचार था कि मात्र अनुभव को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। उनका एक विचित्र कथन ये भी था कि जो भारी शोर के बीच भी संगीत सुन सकता है वो मूल्यवान उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। आज के कोलाहलपूर्ण जनसंकुल समाज में मानव को जीना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में उसे ऐसी मानसिकता का निर्माण करना ही पड़ेगा कि वो शोर के बीच भी संगीत की स्वर लहरियों के प्रति अपने को एकाग्र करे। यदि वो महान उपलब्धियों के प्रति सजग और सचेष्ट है तो उसे ऐसी विषम स्थिति में जीने के लिए अपने को तैयार करना होगा। विक्रम साराभाई का एक स्वप्न था कि खेती तथा उद्योग के लिए राष्ट्रीय एकात्मता

0: और साक्षरता बढ़ाने के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए और खनिज संपत्ति की खोज के लिए विविध क्षेत्रों में अणुशक्ति का उपयोग हो। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विचार था कि देश का विकास और उत्कर्ष लोगों के वैज्ञानिक तथा तांत्रिक साधनों के विकास कार्यों की उपयोगिता की कुशलता पर निर्भर रहता है। मूलभूत विज्ञान, तंत्र शास्त्रीय ज्ञान और औद्योगिक अनुभव, इन सब का नियोजनात्मक उपयोग करने से शीघ्र आर्थिक विकास कर सकता है। अपनी राष्ट्रीय संपत्ति तथा उत्पादन केंद्र सुरक्षित रखने के पूर्व हमें विपुल संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। युवा स्त्री पुरुषों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और बड़े वैज्ञानिक निर्माण करना चाहिए। अपने देश की आवश्यकताएं क्या हैं इसका पता लगाकर उनको निर्मित करनी चाहिए। ये कार्य शीघ्र होना चाहिए। विश्व के कोने कोने से हमें नए और आधुनिक अन्वेषण के तंत्र सीखने चाहिए और उसी समय ऐसे अन्वेषण तंत्र बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को उत्साहित करना चाहिए। विक्रम साराभाई ने बाह्य अंतरिक्ष के शक्तिपूर्ण उपयोग पर क्रांतिकारी अवधारणा से विश्व को चमत्कृत किया था। परमाणु विस्फोट से त्रस्त मानवता आज परमाणु शक्ति का उपयोग ध्वंस के बजाय सर्जन में करना चाहती है और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देश विदेश में अपनी मान्यताओं का प्रसारण करने के लिए मानवता की इस आकांक्षा की संपूर्ति करने का प्रयास किया था। साराभाई वैज्ञानिक शोध में लगे रहते हुए ये आकांक्षा रखते थे कि विज्ञान और तंत्र शास्त्र दोनों एक साथ बढ़ते रहें और बुद्धिमान लोगों को इन दोनों की शिक्षा दी जाए और भारत में उसके लिए वैसे उपयुक्त वातावरण का निर्माण होना चाहिए।
1: अभी आप विक्रम साराभाई के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ आज का विचार बिंदु कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर अतुल बावने से ब्रजेश शुक्ल की बातचीत। बातचीत का विषय है नींबू वर्गीय पौधों में होने वाले प्रमुख रोग और उनका निदान। लीजिए सुनिए।
1: खेती किसानी के काम में बागवानी भी भैया होकर प्रमुख हिस्सा हवे। आज अपने बीच अतुल सुरेश बाड़े पादप रोग विभाग कृषि संख्या नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सुवर से आई बाटे। भैया एकर बहुत बढ़िया जानकार हैं। तो नींबू वर्गीय जोन पौधा हैं जैसे नींबू संतरा मौसमी जैसे फसल में कौन कौन बीमारी बाटे इपे भैया बताई। तो भैया बतावे कि नींबू वर्गीय फसल का प्रमुख बीमारी कौन कौन बाटे।
2: नींबू वर्गीय प्रमुख बीमारियां ये है कि जैसे कि आपका सिट्रस कैंकर पहली, दूसरी है आपका गमोसिस और तीसरी बीमारी है आपका पत्ती झुलसा और फल सड़न। उसके बाद में आता है आपका सिट्रस ट्रिस्टिसा वायरस। आखिरी में आता है सिट्रस ग्रीनिंग।
1: अच्छा भैया जो सिट्रस कैंकर का लक्षण का बाटे एक निदान का बाटे थोड़ा यू बताओ मम्मी सबके।
2: सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया जनक बीमारी है जैसे कि आपको फूलों पे आपके पत्तियों पे फलों पे आपको धब्बे दिखेंगे, काले भूरे रंग के धब्बे दिखेंगे और धब्बों के साथ साथ उसके भीतर आपको चारों ओर पीली रेखाएं दिखेंगी। उसके बाद जो है आपके फल का आकार

0: बिगड़ जाएगा, साथ ही साथ वो फिर आपके फल सड़ने लग जाएंगे। अब निदान की बात करेंगे इसमें,
1: हाँ
0: तो आपको सबसे पहले नर्सरी में जो भी पौधा लेना है वो स्वास्थ्य उसका पौधे का अच्छा हो। जहाँ आपने पौधा लगाया है वो जगह आपकी साफ सुथरी हो। अगर आपके पेड़ पौधों में अगर कुछ बीमारी दिक्कत आती है तो उसे हटाकर नष्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर से छिड़काव कर सकते हैं, और साथ साथ बोर्डो मिक्सर का भी आप उसे छिड़काव कर सकते हैं। बोर्डो मिक्सर का आपको 1% का छिड़काव करना है।
1: तो भैया, हमें जब पौधा ले नर्सरी में तो हमें वही समय विशेष ध्यान देख पड़े कि हमारा पौधा स्वस्थ रहे,
0: स्वस्थ
1: चाहे
0: रहे।
1: और पत्ती पे कौन देख ले कि धाक धब्बा ना न, कि बाद में हमें पता चला कि नर्सरी से ले गए हम लगावा तो पौधा सूख गया या रोग ग्रसित हो गया। का भैया अगल बगल जो पौधा है इनका ऐसे प्रभावित हो सकते हैं का, या ढंग का पौधा लगावा
0: जब
1: जाए तो?
0: पौधा ही स्वास्थ्य लेंगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका पेड़ भी अच्छा होगा। और खासकर जब हम उसका स्वास्थ्य अच्छा देख के लेते हैं तो प्रमुख से ही हम उसका देखभाल भी अच्छे से करेंगे, और साथ ही साथ हमें बीमारी से भी बचाव मिलेगा।
1: तो भैया ये गमोसिस के लक्षण का हो, एक निदान का बाटे यो भैया बताई दी।
0: ये गमोसिस एक फुफाजनक बीमारी है। जैसे कि आपके तन हो गया या फिर आपकी जो खाल होती है उससे एक रस द्रव्य समान निकलता है। वह रस जैसी निकलता है उसके बाद जो खाल होती है पेड़ की वह काली पड़ जाती है। जब वो खाल काली पड़ जाती है तो उसे हमें एक अच्छे साफ सुथरे चाकू से उसे काट कर हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद जब हम निदान की ओर बढ़ेंगे तब तो हमें निदान में क्या है कि पहले जिस तरीके से हमने उसे काट के हटा दिया तो उसे फिर हमें बोर्डो पेस्ट का मिक्सचर लगाना है या फिर हमें उसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाना है। अगर उसे नहीं काटा गया तो फिर पेड़ सूखने लग जाएगा, और साथ ही साथ अधिक नमी का जो वातावरण होता है वो उसे असरदार कर देगा और आपका पेड़ खराब होके सूख जाएगा। और जब निदान की बात करेंगे, जैसे हमें हमने अभी आपको बोर्डो पेस्ट का तो पता ही दिया,
1: हाँ
0: तो उसमें उसके बाद जैसे जल थराव नहीं होना चाहिए, जल ज़्यादा बाद में आएगी तो नमी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके उस बीमारी को ये
1: बढ़ावा
0: बढ़ावा
1: मिलेगा।
0: मिलेगा। और आवश्यकता अनुसार आप मिट्टी में मेटालैक्सिल या फिर फॉसिटिल एल का ये केमिकल का आप ड्रेंच भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ रोग मुक्त पौधे की जो सामग्री है जैसे कि हम पहले भी पुराने वाले इसमें या बता चुके हैं पिछले
1: हाँ
0: वाले में कि हमें
1: हाँ
0: रोग मुक्त सामग्री ही लेना है।
1: अच्छा भैया, पत्ती झुलसा और फल सड़न का लक्षण का बाटे और भैया का निदान का बाटे, ये हमें किसान भैया के बताऊँ ही आप।
0: पत्ती झुलसा और फल सड़न। फल सड़न सरल है, फल का सड़ना। पत्ती का झुलसना मतलब जो भूरे काले रंग के धब्बे गिरेंगे वो छोटे छोटे धब्बे होते हैं, साथ ही साथ आपके धब्बे जुड़कर यानी मिलके बड़े आकार में हो जाएंगे जिससे पत्ती का झुलसा आपको दिखाई पड़ेगा। अगर पत्ती झुलस गई तो फिर जो पोषक तत्व जो खाना बनना
1: पौधों को
0: है
1: नहीं
0: वो
1: मिलेगा।
0: पौधे को बन नहीं पाएगा, और साथ ही साथ आपके ये धब्बे पौधे पे भी दिखेंगे। धब्बे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आकार बिगड़ जाएगा। आकार बिगड़ जाने से फिर आपका पौधों में जो रस है वो भी कम हो जाएगा और आपका पौधों का जो है
1: विकास रुक जाएगा।
0: विकास रुक जाएगा, और
1: हाँ
0: साथ ही साथ आपका पेड़ भी कमजोर हो जाएगा। अब निदान की बात करेंगे तो हमें इसमें पहले तो पेड़ हमें एकदम स्वस्थ पेड़ लेना है। अगर हमें ऐसी कुछ पत्ते झुलसते हुए दिखते हैं तो उसे काट के नष्ट करना है। उसके बाद आपके बगीचे में अच्छे से प्रकाश आना चाहिए, हवा आराम से आते जाते रहनी चाहिए, जैसे कि हवादार होना चाहिए आपका बगीचा। साथ ही साथ हमें स्प्रे करना पड़ेगा किसका, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का और बोर्डो पेस्ट का। 1% आपका इसका छिड़काव करेंगे हम बोर्डो का मिक्सचर का, और आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपका 3% के 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से।
1: तो भैया, तो पौधा अगर हम छिड़काव कर दें तो पौधा स्वस्थ रहे
0: स्वस्थ
1: हमारा।
0: रहेगा, जैसे कि लक्षण दिखने लग जाते तो बेहतर है कि आप पहले ही उसे छिड़काव कर
1: छिड़काव
0: दीजिए, तो इससे क्या होगा कि हमें बचाव मिलेगा
1: पहले
0: उस
1: से
0: बीमारी
1: बचाव
0: से।
1: होइए। हाँ अच्छा भैया, साइट्रस स्टेजा वायरस का एक लक्षण का होवे और एक निदान का बटे, जिससे किसान भैया लोग अपने पौधा बचा पाओ।
0: साइट्रस ट्रिस्टिजा वायरस यह आपके एफिड द्वारा कीट से फैलता है। अगर हमें पहले तो एफिड को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, वो तो हम निदान में बताएंगे।
1: हाँ
0: जैसे कि जब ये ट्रिस्टिजा वायरस आ जाता है, पेड़ की बढ़ोतरी

0: रुक जाती है, फल आपके छोटे हो जाते हैं, पेड़ कमजोर हो जाता है, पेड़ सूखने लगता है और साथ ही साथ फिर पेड़ कमजोर होके मर जाता है। जैसे कि आप एफिड का काम क्या होता है, एक प्रमुख वाहन की तरह यह स्वरूप में काम करता है। एक जब यह संक्रमित पौधे से एफिड जिसे रस शोषण करता है उसके बाद दूसरे स्वास्थ्य यानी
1: पौधा
0: पौधे पे जाता है तो वहां पे वो वायरस उसमें डाल देता है। जब वो खाने के स्वरूप में रस का शोषण करता है पत्तियों में से उसके बाद दूसरे आपके पौधों पे जाता है तो उसी तरह आपका जो वायरस फैला देता है। अब प्रमुख में हमें निदान नहीं करना चाहिए कि हमें वेक्टर को रोकना है, जैसे वेक्टर वाहन, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एक ये वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे ले जाने में इसका कार्यरत काम है। अगर इसे हम रोका जाए, जैसे कि आपका इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया जाए, आप 3% 5% मतलब 5 ग्राम या 3 ग्राम पानी में मिला के 1 लीटर के आप स्प्रे कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप अगर इमिडाक्लोप्रिड नहीं है तो थायोमैक्सेट के भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि हमें लक्षण दिखते हैं इस ट्रिस्टिजा वायरस के तो उस पेड़ को हमें छाट के हटा देना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ से आप बाकी पेड़ आप बचा सकते हैं। अगर पहले ही हमने इस पेड़ को संक्रमित पेड़ को हटा दिया तो आपकी बगीचा आपका बाकी पेड़ों के लिए सुरक्षित रहेगा।
1: अच्छा भैया, ग्रीनिंग रोग का लक्षण का हो, एकर निदान का बाटे?
0: सिट्रस ग्रीनिंग ये जो है आपका लक्षण, जैसे कि पत्तियां असामान्य रूप से पत्तियों पे पीले धब्बे पड़ जाते हैं, साथ ही साथ जो पत्तियों की नसें होती है वह हरी रह जाती है लेकिन बाकी का जो भाग होता है पत्तियों का वह पीला पड़ जाता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यह भी सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस की तरह कीट साइलाइट से भी फैलता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैलता है। इसका वाहन है आपका वेक्टर भी कह सकते, वाहन भी कहते हैं, साइलाइट कीड़ा होता है, और साथ ही साथ इसके जो फल होते हैं छोटे छोटे होते हैं टेढ़े मेढ़े आकार के हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमें खाने में उपयुक्त नहीं रहते, उसका रस नहीं मिलेगा और फीके और आपको इसका अधूरे विकसित दिखेंगे, जो बीज भी होते हैं उसमें से उसके भी विकसित पूरा तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसका निदान ये है कि हमें जब भी ये सब इसका साइलेंट दिखे, अगर कीड़ा दिखता है तो हमें इसे इमिडाक्लोफ्रिड या थायमैक्सेट का हमें स्प्रे छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि यह रोग को फैलने से एक पौधे से दूसरे पौधे पे रोका जा
1: रोकता है।
0: सकेगा।
1: भैया, हमारे कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ भैया आयन और हमें सबके पौधे के स्वस्थ

0: कीड़ा दिखता है, तो हमें इसे इमिडाक्लोफ्रिड या थायमैक्सिड का हमें स्प्रे छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि यह रोग को फैलने से एक पौधे से दूसरे पौधे पे रोका जा
1: रोकता है।
0: सकेगा।
1: भैया हमारे कार्यक्रम में एक विषय विशेषज्ञ भैया आयन और हमें सबके पौधे के स्वस्थ रखे बदे काका कैसे किया जाए बहुत बढ़िया ढंग से बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अतुल बावने से ब्रजेश शुक्ल की बातचीत। विषय था नींबू वर्गीय पौधों में होने वाले प्रमुख रोग और उनका निदान। किसान भाइयों, अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विषय है डायरिया का होम्योपैथिक उपचार और वार्ताकार हैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी।
1: डायरिया एक बहुत आम स्वास्थ्य समस्या है जिसका तात्पर्य है कि सामान से ज़्यादा या पतला या पानी जैसा मल या स्टूल का आना। आमतौर पर दिन में कम से कम 3 बार या उससे ज़्यादा बार ढीला या पतला मल आता है तो उसे डायरिया कहा जाता है। यह एक पाचन संबंधी समस्या है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को डायरिया ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि इसकी अधिकता से शरीर में पानी की कमी, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं या निर्जलीकरण कहते हैं, वो होने लगता है और इस उम्र में, बच्चों और बुजुर्गों की उम्र में, ये निर्जलीकरण ज़्यादा शरीर को प्रभावित करता है। डायरिया का कारण बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी जीवों का संक्रमण हो सकता है और ये संक्रमण या इन्फेक्शन खाने पीने में पर्याप्त सफाई का ध्यान न रखने पर या स्वच्छता और साफ सुरक्षित पानी की कमी से भी हो सकता है। खाद्य पदार्थों से एलर्जी भी डायरिया का एक कारण है, जैसे दूध और दुग्ध उत्पादों में मौजूद लैक्टोस नाम का सब्सटेंस, इसको पचाने में और गेहूं, जौ और राई में मौजूद ग्लूटेन को पचाने में असमर्थता इसका एक कारण हो सकता है। अधिक मात्रा में लैक्सेटिव्स, जिनको कब्ज की शिकायत होती है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा मात्रा में लैक्सेटिव का सेवन भी डायरिया कर सकता है। कैंसर के निदान में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है और कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट के फलस्वरूप भी डायरिया होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे IBS कहा जाता है, जो आंतों का एक विकार है, इसमें इंटेस्टाइन यानी आंतों की गति प्रभावित होती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब भी डायरिया का कारण हो सकते हैं। तनाव एंजाइटी भी आंतों की गति को बढ़ा देता है, अधिक तनाव डायरिया का कारण होता है। डायरिया होने पर तला मिर्च मसालेदार मीठा भोजन से परहेज करना चाहिए, साथ ही कैफीन युक्त पदार्थों के सेवन से भी बचना चाहिए। खाने और पानी की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दूषित पानी और खाने का सेवन नहीं करना चाहिए, खाना स्वच्छ साफ और ताजा होना चाहिए। डायरिया के दौरान शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS, नारियल पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सुपाच्य भोजन जैसे केला, चावल, खिचड़ी आदि लें। प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दही, जो कि आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद करता है, इस तरह के पदार्थ सेहत के लिए अच्छे होते हैं। डायरिया अगर लंबे समय तक बना रहे तो ये गंभीर हो सकता है और इसके लिए डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि डायरिया डिहाइड्रेशन कर सकता है और पानी की कमी से बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा संवेदनशील होने के कारण इसका दुष्प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। होम्योपैथिक में मरीज के लक्षणों के निर्धारण के आधार पर दवाई

0: का चयन किया जाता है जिसमें कुछ उपयोगी दवाएं हैं। पोडोफाइलम, जिसमें अधिक मात्रा में पानी जैसा मल पेट में मरोड़ के साथ गैस और कमजोरी के साथ देखा जाता है। आर्सेनिक एल्बम में बदबूदार डायरिया, जिसमें उल्टी मित्री के साथ बहुत अधिक कमजोरी, थकान, घबराहट होती है। मरीज को खाने, देखने और उसकी महक से भी उलझन होती है। इस अवस्था में आर्सेनिक एल्बम एक अच्छी दवा होती है। ईपिका, यदि डायरिया के साथ मिचली, उल्टी के लक्षण हो, मल हरे रंग का झागदार हो, नाभि के आसपास दर्द हो, ऐसे मरीजों के लिए ईपिका लाभकारी है। जलसीमियन के मरीजों में डायरिया के साथ सिरदर्द, एंजाइटी, घबराहट, कमजोरी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एलोस, पेट में गुड़गुड़ाहट के साथ अचानक मल त्याग की जरूरत होती है। कभी कभी गैस के साथ मरीज की जानकारी के बिना भी मल त्याग हो जाता है। व्यक्ति को मल त्याग करने के बाद भी लगातार स्टूल जाने की इच्छा बनी रहती है। इस तरह की कंडीशन में एलोज एक लाभकारी दवा है। ऐसे लोग जो पब्लिक स्पीकर्स हों, पब्लिक परफॉर्मर हों, ऐसे लोगों में घबराहट या दबाव होने से डायरिया एक कारण बन जाता है और इस तरह के लोगों में अर्जेंटम नाइट्रिकम एक कारगर दवा है। ऐसे लोगों को कुछ भी खाने या पीने के बाद या मीठे के सेवन के बाद डायरिया की परेशानी देखी जाती है। नक्सफोमिका के मरीजों में डायरिया की दिक्कत बहुत घी, तेल, मसालेदार भोजन या अल्कोहल के सेवन से होता है। ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं और कब्ज की शिकायत भी इनमें डायरिया के साथ देखी जाती है। यदि समस्या बनी रहती है तो किसी कुशल रजिस्टर्ड चिकित्सक से दवाइयों का निर्धारण व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर करने से रोग का निदान किया जा सकता है।
1: डायरिया का होम्योपैथी द्वारा उपचार। अभी आप डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:51 और 30 सेकंड हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट सुनिएगा सुबह 7:30 बजे। संसद समीक्षा सुनाएंगे रात 8 बजे। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे। और रात 10 बजे सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे।

उर्दू कार्यक्रम सुनिएगा रोज की तरह सुबह 9:30 बजे। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:00 बजे 7:10 पर फिल्मों से भजन सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित रामाश्रय झा का ख्याल गायन सुनिएगा सुबह 7:45 पर। दिन में 12:15 बजे KL सूद का जल तरंग वादन होगा। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनिएगा सुबह 8:45 पर।

सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 9:50 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा एसके घोष के स्वर में भजन और गीत वॉइस ऑफ प्रयागराज। ये कार्यक्रम लेकर के हाजिर होंगे दिन में 10:05 पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 10:30। कलाकार होंगी अनुराधा श्रीवास्तव, कमलेश चंद्र यादव, पंचम लाल यादव और साथी।

एक ही कलाकार पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिन में 11 बजे। फरमाइशी फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30 बजे। महिलाएं अपना कार्यक्रम

लक्ष्मी सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत रूपक सुनवाया जाएगा समय का विज्ञान और जीवन दर्शन। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 2:30। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी लेकर के हाजिर होंगे शाम 5:15। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30। ग्रामीण भाई सुनेंगे सतीश शुक्ल से नीति वचन, साथ ही बाबूलाल दिवाकर के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। किस्सा गोई सुनिएगा शाम 7:31 पर। हमारा ये कार्यक्रम कहानीकार यशपाल पर आधारित होगा। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं, उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। स्वर उत्तरा केलकर का था और संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन।

ये कार्यक्रम का पहला भजन हमने लिया है फिल्म जेल से, आवाज लता मंगेशकर की है, रचना अजय कुमार गर्ग की और संगीत शमीर टंडन का।

लीजिए सुनिए संत तुलसीदास जी से ये भक्ति रचना। संत तुलसीदास फिल्म का नाम है, रचना भागवत मिश्रा की है, संगीत राम कदम का, आवाज पंडित भीमसेन जोशी की है।

0: अभी आपने पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में ये भजन सुना। इसी के साथ आज का फिल्मों से भजन का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर दिया विशेष बल। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है यह विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर मांगा जवाब। और गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं प्रभावी कदम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कल अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भावी कार्ययोजना की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करने पर केंद्रित रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार के भीतर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार दोनों प्रकार की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एकीकृत एवं प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सकें। जन केंद्रित सुशासन का महत्व बतलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक ही सदैव शासन व्यवस्था के केंद्र में रहने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि हर निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर कल लोकसभा में चर्चा हुई। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्यवाही को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कल कई बार बाधित हुई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को कुल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

0: इस महाअभियान में मिशन से जुड़े 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तिरंगों का निर्माण करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल नीट मुद्दे पर प्रदर्शन के मामले में गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्यवागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।
2: अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पहले किसी विद्वान अधिवक्ता के दिवंगत होने पर मात्र 1.5 लाख मिलते थे। हमने कहा भी 1.5 लाख बहुत कम राशि है, इस राशि को हमने 5 लाख रुपया किया। हम लोगों ने इसके जो कॉर्पस फंड है इसको हमने 500 करोड़ रुपए का ही कॉर्पस फंड आपका बना दिया है। ये राज्य सरकार कोई भी रहे इसके ब्याज से ही सारा काम चलेगा। अब तक हम 4,000 ऐसे अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध करवा चुके हैं।
0: प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
3: सनातन दर्शन विचार एवं संस्कृति में गुरु शिष्य के रिश्ते को प्रतिष्ठित करने वाला पावन पर्व गुरु पूर्णिमा गोरक्ष पीठ के लिए विशेष होता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वह अवसर होता है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर शिवावतार एवं नाथ पंथ के आदि गुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने पूर्ववर्ती गुरुजन की पूजन स्तुति करते हैं। इसके बाद वह अपने शिष्यों और गोरक्ष पीठ के श्रद्धालुओं को स्नेहाशीष से अभिसंचित करते हैं। जीएन चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: आज से ही भारतीय जनता पार्टी वाराणसी से देशव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। इसमें मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पवित्र सावन माह के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आने वाली महिला कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए वाराणसी नगर निगम महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग आवास, शौचालय और फीडिंग रूम की व्यवस्था करेगा। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए हाईवे पर 30 जुलाई से 28 अगस्त तक वाहनों की गति सीमित कर दी जाएगी। यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए हाईवे की एक साइड आरक्षित रहेगी। हापुड़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर 30 जुलाई से कांवड़ मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भारी वाहनों के लिए यातायात परिवर्तन लागू किया जा रहा है। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया कि हल्के और मध्यम श्रेणी के वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन 4 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होगा और 12 अगस्त तक

0: प्रभावी रहेगा। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतमबुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर दिया विशेष बल। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है यह विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों को रिहा करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर मांगा जवाब। और गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के परिचय समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार ने उठाए हैं प्रभावी कदम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: ना अपना रिदम बनाए रखा और अंतिम लैप में तो शानदार प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया 27:49.78 के साथ। स्वर्ण पदक पाया ऑस्ट्रेलिया के वाई रॉबिन्सन ने 27:48.93 के साथ और कांस्य पदक मिला आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारके को। गुलबीर ने रवानगी से पहले ट्रेनिंग और उम्मीदों को लेकर कहा था,
1: अच्छी बेटर करेंगे अपना जितना जिस हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है जिस हिसाब से प्लान है कोच का अच्छा होगा
2: बस ये लास्ट वाला।
0: पुरुषों के 400 मीटर में दो भारतीय थे, उम्मीदें विशाल टीके से ज्यादा थीं और उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में हीट 6 में 46.49 सेकंड के साथ दूसरा स्थान पाया और क्वालिफाई कर लिया। हालांकि कुल मिलाकर 16 क्वालिफायर्स में वे 14वें स्थान पर रहे, यानी अगर पदक की उम्मीद जिंदा रखनी है तो आगे उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। इसके पहले हीट 3 में राजेश रमेश 47.73 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर आए और ओवरऑल 25वें स्थान पर रहे, क्वालिफाई नहीं कर सके। महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह से बहुत उम्मीदें थी कि वो पुरुषों की स्पर्धा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1.93 मीटर की ऊंचाई लांघना। पूजा ने यहां पर शुरुआत की 1.72 मीटर से, उसके बाद 1.77 मीटर की ऊंचाई पार की, इसके बाद बहुत तेज बारिश आई और करीब 1.5 घंटे के लिए स्पर्धा को रोक दिया गया और लगता है पूजा की रिदम भी शायद यहीं पर टूट गई। जब स्पर्धा आरंभ हुई

0: 1.82 मीटर की ऊंचाई फांदने की कोशिश पूजा ने की लगातार, लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाई। पूजा के कूद की ऊंचाई बस यहीं थम गई और साथ ही पदक की उम्मीद भी जाती रही।
1: A ray of sunshine for all the fans of weightlifting out there, and definitely a moment of pride for all Indians to smile as Harjinder Kaur won the silver medal in the women's 69 kilogram category finals, thereby taking the total medal tally to 7 in weightlifting. Harjinder won the silver medal with a total of 227 kilograms, which included 101 kilogram in snatch and 126 kilogram in clean and jerk. She put a dominant display in the snatch category of the women's 69 kilogram final. She lifted 96 kilogram, 99 kilogram and 101 kilogram in her 3 attempts in snatch, and thereby her best effort in snatch was recorded at 101 kilogram. Thereby her total went on to become 227 kilogram, which bought India the 7th medal in weightlifting, and Harjinder contributed by bringing in the silver in the women's 69 kilogram category.
2: 1 year से सर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए रिजल्ट है उसका ही। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, डाउन नहीं होने दिया कभी, हर टाइम मेरा साथ दिया है।
1: Well, heartbreak for all the lovers of weightlifting. India's Nirupama Devi Serum had raced her opening attempt in the clean and jerk to 123 kilogram in the women's 63 kilogram final after initially registering 115 kilogram. But she failed to complete all her 3 attempts in clean and jerk at 123 kilogram in the women's 63 kilogram final. With no successful lift recorded in the clean and jerk round, Nirupama was out of medal contention and registered a did not finish in the women's 63 kilogram final.
0: कल भारत के 5 मुक्केबाज रिंग में उतरे अपने ग्लव्स का दम आजमाने के लिए। पांचों बड़ी मेहनत कर राउंड ऑफ 8 में पहुंचे थे और अब पदक की खुशबू उन्हें बस आने ही लगी थी। एक जीत और पदक पक्का हो जाएगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है, मन में तो गोल्ड मेडल बसता है। कल शुरुआत की हरियाणा की उर्वर जमीन से निकली नई पौध की प्रीति पवार ने बचपन में लड़कों के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस और पैरी करते करते 22 साल की ये लड़की विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लाई है। कल उसके मुकाबले थी रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड। प्रीति की चपलता, मौके चुरा कर धड़ाधड़ मुक्कों की झड़ी लगा देना, इसका निकोल के पास कोई जवाब ही नहीं था। तीनों राउंड सर्वाइव कर लेना ही निकोल की सबसे बड़ी उपलब्धि।
3: We have a unanimous decision. The winner in the blue corner from India, Preeti Preeti.
4: It's really nice to have a strong team because it does matter from which country you belong. So, real nice.
0: अब सेमीफाइनल में प्रीति का मुकाबला जिम्बाब्वे की कैथरीन वापे से होगा 31 जुलाई को। बस 2 दिन बाद अपना 20वां जन्मदिन मनाने जा रही प्रिया घंघास भी बड़ा पीछे क्यों रहती। स्कॉटलैंड की निया मिशेल को हराकर उन्होंने खुद के लिए ही तोहफा पक्का कर लिया। हालांकि ये बाउट जीतने में उनको बहुत पसीना बहाना पड़ा। अब तय होना था तीसरे राउंड में कि किसको मिलनी है जीत, और ये पूरी तरह प्रिया का रहा। एक के बाद एक उन्होंने जब 3 स्ट्रेट पंच मिशेल के चेहरे पर जड़ दिए, तभी सबको लग गया कि अब तो ये प्रिया पंघास ही जाने वाली हैं अगले राउंड में। स्प्लिट डिसीजन आया और निर्णायकों ने ये बाउट प्रिया के नाम कर दी।
3: द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया, प्रिया प्रिया।
0: अब पिछले हंगचाऊ एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता परवीन हुडा पर जिम्मेदारी थी मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की। सामने रेड कॉर्नर में थी इंग्लैंड की शाचा हिकी। सारा स्थानीय समर्थन हिकी के साथ ही था। कांटे की लड़ाई हुई, लंबी छहरी परवीन ने कोशिश तो बहुत की, मुकाबले में अपने क्षण भी उन्होंने कुछ कमाए, लेकिन अंततः रेफरीज का निर्णय 2-3 से उनके विरुद्ध गया और साथ ही पदक की उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। नाम है जदुमणि सिंह, आज वो भारतीय सितारा है, उसके मुक्कों से विपक्षी थर्रा रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के मांगो मौले उनके खिलाफ थे। पंचेस, अपरकट्स, जैब्स और साथ में पूरी होशियारी से गार्ड बनाए रखा जदुमणि ने, और इसका परिणाम ये हुआ एक और सर्वसम्मति से मिली हुई 5-0 की विजय। छठे दिन की अंतिम बाउट में भी एक भारतीय था, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया रेड कॉर्नर में। उनके सामने थे स्थानीय बॉक्सर रॉबर्ट मैकलाउल्टी। कपिल ने कोशिशें तो बहुत की लेकिन रॉबर्ट उनसे हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुए। 5 में से 3 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर लिए और कहानी

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामाश्रय झा का राग देवगिरी बिलावल में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, हारमोनियम पर हैं श्री शमशाद अहमद खान और तानपुरे पर हैं श्री श्रीकांत वैश्य।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित रामाश्रय झा का राग देवगिरी बिलावल में ख्याल गायन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव। हारमोनियम पर थे

0: श्री शमशाद अहमद खान। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, समाचार कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
8: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से

0: ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज

0: वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जाँच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ते ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए।

0: महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि वो तालीम के शोबे के ताल्लुक से संजीदा नहीं है और वो हकीकी इस्लाहात लाना नहीं चाहती।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने मस्कूरा बिल को एक बड़ी तब्दीली लाने वाला कदम करार दिया और कहा कि मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहानात को यकीनी बनाने के लिए इस तरह का बिल वक्त का तकाजा है।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने मुख्तलिफ इम्तिहानात के पर्चे लीक होने के मामले पर तश्वीश जाहिर की है। जनाब यादव ने कहा कि 2024 में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक नया एक्ट बनाए जाने के बावजूद इस साल नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ। इधर कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तलबा के मफादात का तहफ़ करने में नाकाम रही है और वो तालीमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही है। दीगर अरकान ने भी बहस में हिस्सा लिया, इनमें NCP, CPIM, YSRCP, RJD, AIMIM और श्रोमणी अकाली दल शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद खवातीन को बाइख्तियार और उनकी गुजर बसर को यकीनी बनाना है। ये फैसला कल दिल्ली सेक्रेटरिएट में वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता की सदारत में एक काबीना मीटिंग में किया गया। स्कीम के तहत अहल खवातीन को हर महीने 2500 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के लिए 2026-27 के बजट के लिए 5110 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में नमा निगारों से बात करते हुए वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आगाज़ 1 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 से 60 साल की उम्र के दरमियान वाली वो खवातीन जिनके कुनबे की आमदनी 25 लाख रुपए सालाना है, इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगी।
4: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहने ले पाएंगी।
1: भारतीय जनता पार्टी आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें यौम पैदाइश के मौके पर गुरु पूर्णिमा के सिलसिले में पूरे मुल्क में श्री गुरु रविदास महाराज समरस्त संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। वाराणसी में सियर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जाय पैदाइश पर इस मुहिम का बाजाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: आज बनारस के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास के जाय पैदाइश पर इस मुहिम का फौरी तौर पर आगाज होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां पर दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इस मुहिम के तहत संत रविदास के मुकद्दस जाय पैदाइश की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों और मुल्क की दीगर रियासतों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 25,000 लोगों के शामिल होने का इम्कान है। प्रोग्रामों की ये फहरिस्त माघी पूर्णिमा और संत रविदास की योम पैदाइश यानी अगले बरस 20 फरवरी तक चलेगी। बीजेपी के सदर नितिन नवीन, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी समेत तमाम सरकर्दा लीडरान के इस प्रोग्राम में शिरकत करने की उम्मीद है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: केरलम में 14 में से 7 जिलों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत में तेज बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियासत में आज सुबह सवेरे से औसत बारिश हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके में सरकार की वेश्याना कार्रवाई में गुज़श्ता 2 दिन में मरने वालों की तादाद 30 तक

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार प्रयागराज, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, आज है वो दिन जब हम उन दीपों, उन प्रकाश पुंजों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे अंधकार में उजाला भर दिया।

गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने ही 4 वेदों, 18 पुराणों और महाभारत की रचना की। इसीलिए आज का दिन सभी गुरुओं को समर्पित है। गुरु का मतलब क्या है? गु माने अंधकार और रु माने उसे मिटाने वाला। जो हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर दे, वही गुरु है। कभी मां, कभी पिता, कभी शिक्षक, कभी दोस्त, कभी एक किताब, कभी एक ठोकर भी हमारा गुरु बन जाती है। क्योंकि गुरु सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं मिलता, गुरु जीवन में मिलता है। एक छोटी सी कहानी है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। एक बार एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, बिना उनसे सीधे शिक्षा लिए। जंगल में द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी के सामने अभ्यास किया। गुरु के प्रति श्रद्धा इतनी कि जब गुरु पूर्णिमा में अंगूठा मांगा गया तो बिना पलक झपकाए दे दिया। ये थी गुरु शिष्य की परंपरा। आज अंगूठा देने की आवश्यकता नहीं है, पर हम अपना समय, सम्मान और आभार तो दे ही सकते हैं अपने गुरु को। एक और गुरु, हमारी पहली गुरु, हमारी मां। रात रात भर जागकर जो अक्षर सिखाती है, गिरकर उठना सिखाती है, और पिता जो बिना बोले जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं।

आप भी बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन में वो कौन है जिसने आपको सबसे बड़ा सबक सिखाया? शायद स्कूल के वो टीचर जिन्होंने कहा था तुम कर सकते हो, शायद वो दोस्त जिसने मुश्किल में भी साथ नहीं छोड़ा, शायद वो असफलता जिसने आपको मजबूत बनाया। उनको मन में धन्यवाद बोलिए, आज का दिन उन्हीं के नाम करिए, अगर हो सके तो फोन करिए, अगर पास हो तो मिलने जाइए, जिस माध्यम से भी बोल सकें बोलिए धन्यवाद गुरु जी। कबीरदास जी ने भी कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान और गुरु अगर दोनों एक साथ सामने मिल जाएं तो पहले गुरु का वंदन करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमें भगवान तक का रास्ता दिखाया है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर अपने गुरु को भूल जाते हैं, सोशल मीडिया साइट्स को ही अपना गुरु मान लेते हैं। पर याद रखिए, ये साइट्स जानकारी तो दे सकती हैं, लेकिन संस्कार सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं। तो आज प्रण लीजिए, जो सीखा है उसे बांटेंगे, क्योंकि जो बांटता है वही असली गुरु है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन। जीवन में आपके भी गुरु हमेशा आपके साथ रहें और आप भी किसी के गुरु बन जाएं।

एक वो कालखंड भी था जब मनुष्य का जीवन मर्यादा, चरित्र, वाणी, संयम पर केंद्रित होता था, परंतु चलते चलते आज हम अर्थ युग में आ पहुंचे हैं और यहां पर अर्थ साधने के लिए जो रास्ता बनाते हैं हम, उस पर तमाम अच्छी बुरी ऊंचाइयों को चढ़ते उतरते रहते हैं। गुरु हमारे हमेशा हमें रोकते हैं, वो बताते हैं कि शॉर्टकट कभी भी हमें स्थायी सफलता नहीं दे सकता। यदि हमें स्थायी सफलता चाहिए, सुख और दुख में अपनी प्रवृत्ति को समान रखने की शक्ति चाहिए, तो हमें ज्ञान के गूढ़ रहस्य को समझना होगा। आज इस दौड़ भाग में कहीं हम अपने गुरुओं की सिखाई उन बातों को भूलते तो नहीं जा रहे हैं। गुरु का सबसे प्यारा शिष्य वो होता है जो गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है, गुरु के दिए गए सबक को याद रखता है, याद करता है। गुरु वो हैं जो अपने शिष्य की सफलता से ही प्रफुल्लित और आनंदित होते हैं। तो जरूरी है कि हम सन्मार्ग पर चलें, अपने गुरुओं की सिखाई बातों को याद रखें और अपनी सफलता से अपने गुरु को गौरवान्वित करें। फिलहाल अब इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने रेडियो हमसफर प्रेमेंद्र को। मिलते हैं कल फिर एक नई बात के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अभय कांत तिवारी। नमस्कार प्रयागराज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: अभी आपने ये गाना सुना जिसे हमने लिया था फिल्म अस्तित्व से। आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह की, गीत भी सुखविंदर सिंह का था और संगीत भी सुखविंदर सिंह का। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। आवाजें हैं अनन्या नंदा और आदित्यनाथ पृथ्वीराज की, रचना मनोज मुंतशिर की है, संगीत अमाल मलिक का है।

0: एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस फिल्म से भी आपने ये गाना सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आज सुनिए कुशीनगर और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है विवेक कुमार का।
1: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 11 करोड़ 32 लाख की लागत से भव्य बुद्ध थीम पार्क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसके उद्घाटन की बात कही जा रही है। यह पार्क बोध वृक्ष, 3D गैलरी और लाइट एंड साउंड शो जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बौद्ध दर्शन का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा, जिससे कुशीनगर की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा गौतम बुद्ध संग्रहालय के नजदीक विकसित इस पार्क को जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। आधुनिक तकनीक, आध्यात्मिक अनुभव और बौद्ध विरासत के अद्भुत संगम के रूप में विकसित यह थीम पार्क देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन, दर्शन और करुणा के संदेश से जोड़ने का नया माध्यम बनेगा। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज विकास खंड में जल जीवन मिशन के तहत जल चौपाल एवं जल अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता VP सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता एवं नियमितता के संबंध में फीडबैक भी प्राप्त किया। ग्रामीणों ने यह बताया कि योजना के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जीवन शैली में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के टेकुआटार में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि
2: बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
1: मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जनसभा को गोरखपुर के सांसद रवि किशन, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह, प्रदेश सरकार के कारागार व कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान तथा अन्य स्थानीय विधायक गण ने संबोधित किया। कुशीनगर जिले में वृक्षारोपण महाअभियान के तहत बीते 12 जुलाई को जिले के विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 39 लाख से अधिक पौधरोपण किया गया। फाजिलनगर क्षेत्र में बौद्धकालीन कुकुत्था नदी के समीप वन विभाग की भूमि पर विशिष्ट वन की स्थापना की गई, जहां लगभग 17,000 से अधिक पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कुशीनगर जिले में खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण हेतु टीकाकरण अभियान के 8वें चरण का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मोबाइल वेटनरी यूनिट एवं बहुउद्देशीय सचल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 जुलाई से चलने वाला यह अभियान 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जिले में पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुशीनगर जिले में लगभग 1,73,000 से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है।
0: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल, आलेख है नरेंद्र प्रताप का।
3: जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के परिसर में प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को आयोजित होने वाले किसान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में जनपद के सुदूर क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में कृषकों ने प्रतिभाग किया। पिछले दिनों जिले में मानसूनी बारिश के चलते जिले में पानी में डूबकर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने जनपद वासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील

0: की है। उन्होंने बताया कि मॉनसून के आगमन के साथ ही जनपद आजमगढ़ में नदियों, तालाबों, पोखरों, झीलों, नहरों एवं अन्य जलाशयों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डूबने की अनेक दुखद घटनाएं सामने आई हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं असावधानी, जलधाराओं की गहराई एवं तीव्र बहाव का सही अनुमान न लगा पाने तथा सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वो स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा जलाशयों के समीप विशेष सतर्कता बरतें। मॉनसून के समय में जगह जगह जलभराव, गंदे पानी और नालियों के कारण संक्रमण जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे निपटने के लिए जिले में गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी जुलाई माह में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए संचारी रोगों से बचाव, स्वच्छता बनाए रखने तथा जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संयुक्त अभियान है जिसमें पंचायत विभाग साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग जागरूकता एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। आजमगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले कुल 49 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विभाग भवन आजमगढ़ के सभागार में किया गया। मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने छात्राओं से उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला एवं बालिका कल्याण से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास तथा शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। छात्राओं ने सम्मान प्राप्त कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अपने जीवन का प्रेरणादायी क्षण बताया तथा भविष्य में और अधिक मेहनत कर जनपद एवं प्रदेश का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में तैनात समूह सखियों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण शिविर हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जिले में अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यशाला में विकास खंड अहिरौला, अतरौलिया, हरैया, लालगंज, मार्टिनगंज एवं मेहनगर की समूह सखियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शासन की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं को अधिकाधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के संबंध में समूह सखियों को आवश्यक दिशा निर्देश एवं विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसे न केवल महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर उद्यमशीलता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। प्रदेश सरकार नारी शक्ति को विकसित उत्तर प्रदेश की धुरी मानते हुए महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं समग्र सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को नई गति प्रदान कर रहा है।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

अभी आप संवेद सुरों में ये देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से फजाओं की खला से, सूरज के उजाले से फजाओं से खला से, चांद और सितारों की चमक और

0: परवेज साहब, पहले हम आपसे आपका तारुफ जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में मुख्तसरन बताइए।
1: मुझे परवेज अलीफ कहते हैं, मैं यहाँ पे बीच में हूँ
0: जी
1: और इस वक्त जो है वो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन में मैं रजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पे।
0: अच्छा
1: मेरा करीब 40 साल पुराना जो है
0: जी
1: वो एक शौक था फॉरेस्ट का, क्योंकि पीलीभीत फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की उसकी कहानी जो है
0: जी
1: वो सारे हिंदुस्तान के फॉरेस्ट में जो है बड़ी मशहूर।
0: बहुत अच्छा
1: ये टाइगर का जो है वो एक सेंटर माना जाता था
0: जी जी जी
1: और अंग्रेजों से लेकर के वो पुराने वक्त में सभ्यता है इन सबका जो है वो यहाँ पर जो है वो एक फन एंड फूड के लिए जो है वो टाइगर के नाम इस्तेमाल होता था।
0: अच्छा
1: ये बड़ा तराई का इलाका है, तराई का जंगल है,
0: जी
1: ये पूरा देहरादून से लेकर के और ये तराई में पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, गोरखपुर जाकर के ये नेपाल तक में दोनों एंड में जाकर के मिल गया है। ये पट्टी कहलाती है तराई आर्कलैंड,
0: जी
1: और इस तराई आर्कलैंड का ये बादशाह है वो
0: अच्छा
1: टाइगर है। ये
0: जी
1: टाइगर हैबिटेट और टाइगर के लिए ये इलाका अपनी जगह बहुत मशहूर और बहुत इसकी अहमियत है टाइगर हैबिटेट।
0: तो ये इस
1: जी
0: सिलसिले में जो आपने मालूमात हासिल की और जो भी काम इस पर किया, तो ये आपका एक क्या बचपन का शौक था या किसी चीज़ से इंस्पायर होकर आप इस तरफ मुतवज्जे हुए?
1: नहीं, बिल्कुल इंस्पायर हुए। एक
0: जी
1: बड़े मशहूर, मैं बहुत छोटा था जब पढ़ता था,
0: जी जी
1: वो संपूर्ण नगर में मैं पढ़ता था, वहां पर अक्सर जब कॉलेज में जाता था तो रास्ता रुका हुआ है, पता चला क्या हो रहा है, बोले थे यहाँ पर जो है आदमपुर टाइगर को मारने के लिए हम शिकार हो रहा।
0: अच्छा
1: तो भारत सिंह माधो टांडा के एक शिकारी थे, ये बात है करीब 1965 और 70 के बीच की।
0: अच्छा
1: पीलीभीत में जब हमने देखा यहाँ पर कोई टाइगर की बड़ी कहानियां हैं और वो सुनाते थे, ब्रिटिशर्स जमींदार और अंग्रेज आते थे,
0: जी
1: जिम कॉर्बेट का नाम तो मतलब यह है कि टाइगर को, आदमखोर टाइगर को मारने में है,
0: जी
1: लेकिन पीलीभीत जो है वो टाइगर प्रोटेक्शन और टाइगर प्रिवेंशन को ले लीजिए
0: जी उनके
1: और
0: तहफ्फुज़
1: टाइगर
0: के लिए
1: हैबिटेट के लिए बहुत ज्यादा वो है। तो फिर हमारी भारत सिंह जी से जो है
0: जी
1: मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग जो हो तो इसमें इंटरेस्ट लीजिए, वाइल्ड लाइफ को देखिए, यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत तेजी से कम हो रही
0: परवेज
1: बहुत
0: साहब,
1: तेजी से।
0: ये आज 29 जुलाई को जो हम आलमी यौम टाइगर मना रहे हैं, ये कब से मनाया जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है?
1: देखिए इसके पीछे वजह यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर प्रोटेक्शन का काम हिंदुस्तान में होता है,
0: अच्छा
1: और हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा टाइगर आज ही दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं
0: जी जी
1: वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हिंदुस्तान टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। वो टाइगर का भी जो है ये हैबिटेट यहाँ पर बहुत अच्छा है। एक्चुअली चूंकि शारदा नदी जो है
0: जी
1: और जो नहर का जो सिस्टम है,
0: जी जी
1: पूरे जंगल के अंदर नहरें होना, घास के बड़े बड़े जो है वो लैंड होना, तो ये सब ऐसे पॉजिटिव एटमोसफेयर है
0: जी
1: जिससे
0: जो
1: जो
0: उन
1: है वो
0: जानवरों
1: टाइगर
0: को
1: को।
0: अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं।
1: जी 1973 में ये एक्ट जो है इंदिरा जी ने जो है वो लेके आई थी
0: जी
1: और उन्होंने कहा था कि टाइगर का प्रोटेक्शन हो। दूसरी बात ये कि टाइगर हमारा जो है नेशनल एनिमल भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग टाइगर्स के तहफ्फुज़ की बात कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी नस्ल जिंदा भी रहे और आगे उसकी बका भी हो। तो उसमें जो हमारा माहौल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें टाइगर्स का क्या रोल है, उनकी क्या ज़रूरत है कि हम उसकी तरफ इतने ज़्यादा मुतवज्जे रहते हैं?
1: देखिए एक चीज बायोडाइवर्सिटी है यानी
0: जी
1: जैव विविधता,
0: जी जी
1: तो बायोडाइवर्सिटी अपनी जगह पर पूरी दुनिया में जो आप चाहे मतलब ये है कि छोटे से लेके नन्हे से जो है वो प्रोटोजोआ से लेकर के और आप बड़े से बड़े जानवर तक चले जाइए, हाथी तक चले जाइए, तो
0: जी
1: ये सब एक जो है बायोस्फीयर है और बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है और
0: बिल्कुल
1: पूरे तरीके से वो सब एक सिस्टमेटिक चीज ही है।
0: जी हाँ
1: टाइगर
0: जी
1: के बारे में तो ये वो सोचा जाता है, कहा जाता है और ये हकीकत है कि

0: कि जहां कहीं टाइगर है तो
1: जी
0: वो जंगल अपनी जगह महफूज है।
1: अच्छा
0: तो टाइगर्स डे जो है, जब से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में टाइगर नेशनल एनिमल हुआ और टाइगर के प्रोटेक्शन की बात की गई, एक्ट लाया गया बाकायदा। आप देखिए
1: जी
0: पीलीभीत में तो 17-17 टाइगर, 20-20 टाइगर एक एक हफ्ते में जो है शिकार मारना है, ये सब
1: जी
0: किया, तो
1: अच्छा,
0: ये
1: इसके
0: सब
1: कम,
0: साफ हो गया।
1: हाँ, कम होने की खास वजह क्या रही? शिकार के अलावा भी क्या कोई वजह रही जिसकी वजह से ये हमारे टाइगर्स की तादाद कम हुई थी?
0: देखिए इसको लोगों ने एक शौक के तरीके से इस्तेमाल किया, वो
1: मतलब
0: टाइगर
1: जो
0: को,
1: भी
0: वो टाइगर
1: शिकारी
0: के,
1: होते थे
0: हाँ
1: वो उसे अपना एक एजाज मानते थे कि
0: वो
1: हमने इस पर
0: समझते
1: फतह
0: थे कि
1: हासिल की।
0: हम बहादुर हैं, हम
1: जी
0: बहादुर हैं, तो
1: जी
0: कहते नहीं थे कि हम शेर हैं। तो ये एक बड़ा ही जो है वो स्टेटस सिंबल टाइप का था
1: जी
0: वाइल्ड लाइफ का, तब
1: जो
0: से
1: जंगल
0: और इसकी
1: कटे और आबादियां बढ़ी, क्या इसकी भी वजह रही टाइगर्स की तादाद कम होने में?
0: हाँ तराई में तो बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन
1: अच्छा।
0: ब्रिटिश पीरियड में 200 साल की जो सरकार रही, उसमें देखा गया कि टाइगर को बड़ी तेजी के साथ में जो है इनकी किलिंग हुई, बड़ा नुकसान हुआ इससे। और टाइगर का न होने का मतलब वो जंगल एक उजाड़ हो जाना,
1: जी
0: उसकी जो खूबी है, जो उसकी ब्यूटी है, वो टाइगर है। और टाइगर जो है वो हमारे बायोडायवर्सिटी में जो है सबसे टॉप पे आता है,
1: तो परवेज साहब, जो
0: क्योंकि
1: ये तादाद तेजी से कम हुई थी, इसको बढ़ाने के लिए क्या तरकीब अपनाई गई और सरकार की जानिब से इसके लिए क्या प्लान बनाए गए? क्या
0: देखिए पहली चीज तो ये है कि ये आपका जो है वो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण बना,
1: जी
0: प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, और उस प्राधिकरण के अधीन जो है उसके अंडर में टाइगर रिजर्व है या टाइगर पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है,
1: जी
0: इस तरीके के जो है वो जगहों को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया,
1: जी
0: कहाँ
1: जी
0: कहाँ टाइगर है, कहाँ कहाँ टाइगर के हैबिटेट है, निवास स्थल है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए उस इलाकों को जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसका एक्ट भी अलग बन गया। हाँ उसमें अंदर
1: जी
0: टहलते हुए पाए गए जनाब, तो आपके ऊपर जो है वो सख्त
1: केसरी
0: कानून
1: रहेगा बिल्कुल
0: मैनेजमेंट
1: इस।
0: जब किया गया, तो आज
1: जी
0: ये हालत है, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर हिंदुस्तान में है,
1: बहुत
0: और
1: अच्छी
0: पूरे
1: बात।
0: दुनिया के लोग जो है उनकी कोशिश ये होती है कि तो उन टाइगर को रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमसे कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और लोगों को जोड़िए। 100% मैंने जो है उसको प्रोटेक्शन का काम किया। इसके
1: जी
0: अलावा इन्वायरमेंट एजुकेशन पे हमने काम किया कि जंगल और जंगल के पास के रहने वाले जंगल को जाने, क्योंकि सबसे
1: बिल्कुल,
0: अच्छा काम अगर कोई कर सकता है तो जंगल के पास के लोग
1: पास
0: कर
1: रहने
0: सकते
1: वाले ही कर सकते हैं।
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: उन्हीं ने ही बर्बाद किया और उन्हीं लोगों को के जरिए आबाद हुआ। तो हमने कोशिश ये किया कि जंगल के अंदर और जंगल के आसपास के इलाकों में हमने वर्ल्ड बैंक के स्कूल जोड़ दिए।
1: देखिए परवेज साहब, सरकार और आवाम जब साथ मिलकर काम करती है तभी कोई अच्छा नतीजा सामने आता है, और ये तब्दीली भी आई कि हमारे खत्म होते हुए टाइगर्स फिर से बढ़े, और इसमें आप लोगों का, सरकार का और आम इंसान का, सबका मिला जुला रोल रहा। तो परवेज साहब, हमें बहुत खुशी हुई आपसे इस सिलसिले में बात
0: बहुत
1: करके,
0: बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: आइंदा भी हम आपको जहमत देंगे कि फिर इस तरह के किसी मौजू पर आपको मदु
0: आइए
1: करेंगे।
0: आइए,
1: जी, हम आपके बहुत
0: ठीक
1: बहुत
0: है, ठीक
1: शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह।
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: मैडम,
1: बहुत
0: ठीक
1: बहुत। सामीन, अभी आपने समाप्त की जनाब परवेज हनीफ साहब से ये अहम गुफ्तगू जो आज के आलमी टाइगर्स डे के मौके पर खसूसी तौर पर की गई थी। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि ये हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और आइए अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में थोड़ा सा प्रोग्राम का मज़ा तब्दील करते हुए आपको सुनवाते हैं गुलाम अली की खूबसूरत आवाज़ में शहजाद अहमद की ये प्यारी सी गज़ल।

0: ये थे गुलाम अली जो पेश कर रहे थे शहजाद अहमद की ये खूबसूरत गज़ल। समीन, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमें आपके खतूत और आपके पैगामात का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ख़त लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम, ऑल इंडिया रेडियो रामपुर, पिन कोड 244901। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। जी हाँ सामीन, अब आप व्हाट्सएप पर भी अपनी राय, अपने ख्यालात हम तक बखूबी पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 9410087876। तो हमें आपके ख्यालात का, आपकी राय का, आपके मशवरों का बेचैनी से इंतज़ार रहेगा, खतूत के ज़रिए भी और व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए भी। और अब इसी के साथ अपने प्रोग्राम की मेज़बान रबा पंजुम को रामपुर रेडियो मरकज़ पर तैयार आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दें। अलविदा।
1: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए राम लखन तिवारी व साथी का।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आपने योगेश प्रवीण का लिखा ये भजन सुना एसके घोष के स्वर में। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था

0: वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमा 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया है और अमेरिकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 75 हो गई है। अकेले शिवसागर जिले से कल 7 और मौतें दर्ज की गईं। ऊपरी असम के प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और अधिकतर क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इन्होंने स्कॉट्स काउन में समय निकाला और ऑस्ट्रेलिया के कोई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त हरजिंदर कौर ने भी महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ग्लासगो में चल रही स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा आज मनाई जा रही है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं बल्कि अपने शिष्यों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपने आदर्शों को अपने जीवन की शक्ति का स्रोत बनाएं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्मस्थान पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।

Sudan, आज आषाढ़ मास का आखिरी दिन है और आखिरी दिन यानी कि पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा को हम मनाते हैं गुरु पूर्णिमा के रूप में। आज ही के दिन वेद अभ्यास जी का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है, और तभी से गुरु पूर्णिमा मनाने का विधान है। उन्होंने चार वेदों, 18 पुराणों और महाभारत की रचना की, समाज में संस्कार बोए, जीवन को परिष्कृत किया और ऐसे ग्रंथ लिखे जो अनंत काल तक मनुष्य के जीवन को परिष्कृत करते रहेंगे। प्राचीन

काल में भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। भगवान शिव के बाद गुरु दत्तात्रेय को सबसे बड़ा गुरु माना गया है। इसके बाद देवताओं के पहले गुरु अंगिरा ऋषि थे, उसके बाद अंगिरा के पुत्र बृहस्पति गुरु बने, उसके बाद बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज गुरु बने थे। उसके अलावा हर देवता किसी न किसी का गुरु रहा है। सभी असुरों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य से पूर्व महर्षि भृगु असुरों के गुरु थे। कई महान असुर हुए जो किसी न किसी के गुरु रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति में अत्यंत प्राचीन है और गुरु को ही वह स्थान प्राप्त है जो अपने शिष्य के जीवन को सही मार्ग पर लेकर के चलते हैं। हम अनेक महान विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे उस घड़े को गढ़ने वाले कुम्हार कौन हैं, जो अंदर से सहारा देकर, ऊपर से हल्की ठोकर लगाकर, जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से परिचित कराकर जीवन को ऐसी दिशा देते हैं, जीवन को ऐसा ढालते हैं कि शिष्य जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों परेशानियों को पार करते हुए सन्मार्ग पर चलते चले जाते हैं। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश, अंधकार को नष्ट करने वाला। तो गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और यदि जीवन में अंधकार है तो जीवन निरर्थक है, और यदि उसमें प्रकाश भर जाता है तो हमारा जीवन स्वयं के साथ साथ अपने आसपास के समस्त लोगों के जीवन को भी आलोकित कर देता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे सभी सुधी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां।

गुरु को महत्व देने के लिए ही महान गुरु वेद व्यास जी की जयंती पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया गया था। इस दिन कई महान गुरुओं का जन्म भी हुआ था और बहुतों को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी दिन गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। ये पर्व जून से जुलाई के बीच में आता है। जैसे कि अभी जुलाई के आखिरी दिन चल रहे हैं, उसी बीच में यह गुरु पूर्णिमा का पर्व आ गया। इस पर्व को हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं, क्योंकि गुरु तो सबके होते हैं और गुरु को सम्मान देना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। माता और पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, पर गुरु सभी को अपने बच्चों के समान मानकर ज्ञान देते हैं। गुरु और शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है। हम इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जिस शिष्य ने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की वो पतन की ओर चला गया, और जिस शिष्य ने गुरु के दिखाए मार्ग पर सतत चलना प्रारंभ रखा उस शिष्य ने इतिहास बदल कर रख दिए। गुरु की महत्ता को महत्व देते हुए प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है। एक व्यक्ति गुरु का ऋण कभी नहीं चुका पाता है।

अभी आपने पंचमलाल यादव और साथियों के स्वर में ये गंगा गीत सुना। इसी के साथ आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

शब्द जब दिल से निकलते हैं तो वे केवल गीत नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं की आवाज़ बन जाते हैं। आज मैं हिंदी फिल्म जगत के ऐसे ही गीतकार के बारे में आपसे बोलने जा रही हूँ जिनके शब्दों ने करोड़ों दिलों को छुआ। उनका नाम है योगेश गौड़, जिन्हें दुनिया केवल योगेश के नाम से जानती है।

0: लखनऊ में जन्मे योगेश जी ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया। मुंबई पहुंचने के बाद लंबे समय तक सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि सच्ची कविता वही है जो सीधे दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही ताज़ा और भावपूर्ण लगते हैं।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम

योगेश जी ने फिल्म आनंद के लिए अमर गीत जिंदगी कैसी है पहेली और कहीं दूर जब दिन ढल जाए ऐसे गीत लिखे। इनके अलावा रजनीगंधा का रजनीगंधा फूल तुम्हारे, मिली का आए तुम याद मुझे और मंजिल का रिम झिम गिरे सावन जैसे गीत उनकी लेखनी की उत्कृष्ट मिसाल हैं। उनके शब्दों में सादगी थी लेकिन यही सादगी सीधे दिल में उतर जाती है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: योगेश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि एक ट्रॉफी नहीं थी बल्कि लोगों का प्रेम और सम्मान था। भले ही उनके योगदान के अनुरूप बड़े पुरस्कार कम मिले, लेकिन उनके लिखे गीत भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर बन गए। संगीत प्रेमी आज भी उन्हें हिंदी फिल्म संगीत के सबसे संवेदनशील और श्रेष्ठ गीतकारों में गिनते हैं।

महान गायिका लता मंगेशकर ने उनके बारे में कहा था कि उनके शब्द सामान्य बातचीत जैसे होते थे, लेकिन उनमें अद्भुत कविता छिपी होती थी। यही प्रशंसा बताती है कि योगेश जी की लेखनी कितनी असाधारण थी। कवि हरवंश राय बच्चन की पंक्तियां भी योगेश जी के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जो बीत गई वो बाद गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। योगेश जी से सीखें कि सफलता केवल प्रसिद्धि से नहीं मिलती, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करने और संवेदनशीलता से मिलती है। उनके गीत हमें जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना, प्रेम करना और हर पल को महसूस करना सिखाते हैं। गीत समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चे शब्द कभी नहीं मरते। योगेश जी के गीत आने वाली हर पीढ़ी के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे।

0: हंस कर कस कर बान। अब मोरे मन पे
1: किटी किटी ताम,
0: मोरे तन पे
1: किटी ताम तई,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

और आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर के स्वर में दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत। भीगी हुई राहों पर चलते चलते समझ आया, कुछ सफ़र मंजिल से नहीं एहसासों से पूरे होते हैं।

और आइए आप सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार को फिल्म गुरु में। सावन आया तो हवाओं ने पैगाम दिया, हर सूखी शाख को फिर से जीने का अरमान दिया।

और आइए अब सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के युगल स्वरों में 1942 ए लव स्टोरी का गाना। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवाएं और बरसता आसमान, बस इतना ही काफ़ी है मुस्कुराने के लिए।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म मोहरा में। बादलों का शोर भी कितना हसीन होता है जब दिल में किसी अपने का जिक्र होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मिनी वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: जी आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
2: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
3: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस।

0: पार्टी इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Lok Sabha Speaker Om Birla alleged that some opposition members are deliberately disrupting the question hour, which is not appropriate. He added that obstructing the proceedings of the House in a planned manner is not in accordance with parliamentary traditions. The Rajya Sabha was also adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the paper on the table of the House. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues.
3: Rahul Gandhi is using all kind of undemocratic languages, which is not in the setting for correct discourse in parliamentary democracy. One must use civilized and soft language. We may differ with each other, but the way Rahul ji is using this demeaning kind of languages, which is not good for democracy, which is not for our country.
2: The proceedings of the Lok Sabha has resumed now and Rajya Sabha is adjourned till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. India's total exports reached a record

कद है 5 फीट, रंग गोरा है। इन्होंने जैकेट और काही कलर का पैंट शर्ट पहना हुआ है। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9125643906 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 9125643906। एक और सूचना सुनिए, रामराज चुंदवा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज से सूचित करते हैं कि 20 जून 2026 को शोभिका लापता हो गई। शोभिका की उम्र है 23 वर्ष, चेहरा गोल है, रंग गोरा है और ऊंचाई है 5 फुट। इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 8850199344 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 8850199344। एक और सूचना सुनिए, ग्राम रामपुर गड़ौली से रामलाल मौर्य सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री खुशी मौर्य 29 जून 2026 से लापता है। खुशी की उम्र है 25 वर्ष, रंग गोरा है, चेहरा लंबा है, काले बाल हैं, ये कुर्ती जीन्स पहने हुए हैं और ऊंचाई है 5 फीट। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 8726328088 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 8726328088। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं केएल सूद का जल तरंग वादन। राग है शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केएल सूद का जल तरंग वादन राग शुद्ध सारंग। इनके साथ तबले पर संगत की थी श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आइए सुनते हैं। हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए।
1: हम गुलाब चंद मिश्रा, ग्राम पचोखर, पोस्ट रामजालगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। जी, हम टोटली ब्लाइंड हैं।
0: जी गुलाब जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म नागिन का गाना सुनना चाहते हैं, तन डोले तोरे मन डोले, अब दिल का गया शराबी कौन बजाए।
0: कौन बजाए बांसुरी, लता जी की आवाज़ में पुरानी वाली नागिन फिल्म का ये गाना है, तो आइए सुनते हैं।

0: इस समय श्रोता सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: जी, महेंद्र यादव मुन्ना, मैं बरौसिया प्रयागराज से, मैं इस समय दिल्ली से फोन लगाया हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा, दिल्ली गए हुए महेंद्र जी।
1: जी
0: तो बताइए, वहाँ बैठे बैठे प्रयागराज के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं?
1: हाँ जी मैम, बिल्कुल।
0: तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आई मिलन की रात का गाना है, सावन का महीना आया है घटा से
0: बरसा है पानी।
1: जी
0: तो आप इस समय अगर दिल्ली में है तो जरा दिल्ली का मौसम भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: मौसम तो बढ़िया है मैम, है ठीक ठाक है, लेकिन अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, तो वही देखिए, बैठे बैठे आपको दिल्ली के मौसम का हाल भी पता चल गया और हम सुनवाने जा रहे हैं महेंद्र जी की पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: संगम नगरी प्रयागराज नेवी कला बंतुगरा से पवन निषाद बोल रहे हैं मैं।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: विश्वात्मा फिल्म का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: सात समुंदर पार।
0: मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, साधना सरगम की आवाज में ये गाना है।
1: हाँ जी मैम।
0: तो भाई पवन जी की इस पसंद को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी।
1: हम भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं, राकेश सिंह
0: जी। राकेश सिंह जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: राजकुमार का, अनिल कुमार का फिल्म।
0: अनिल कपूर की राजकुमार।
1: हाँ, अनिल कुमार,
0: अनिल कपूर की फिल्म थी राजकुमार, जिसमें माधुरी दीक्षित ने भी काम किया था। तो आप उस फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, इसमें कोई सा गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है, ठीक।

अभी श्रोता सुन रहे थे फोन कॉल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
2: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
3: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि

0: प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मूज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाज़ों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बहाली और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha has resumed discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, had moved the bill in the House yesterday. Participating in the discussion, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premachandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the changes brought in the proposed bill are merely cosmetic. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House reassembled at 12 noon after the first adjournment, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but opposition members started sloganeering, pressing their demands. The Lok Sabha has extended the tenure of the Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session 2026 of Parliament. The chairman of the committee, BJP MP P.P. Chaudhary, moved the motion to extend the tenure of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. The bill seeks to introduce simultaneous polls to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The motion was adopted by voice vote in the House. Several BJP MPs, including from Jharkhand, today staged a protest at Parliament premises over the alleged paper leak of the Jharkhand Public Service Commission examination, demanding a CBI inquiry into the case and the resignation of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, Dr. Sarma said that the Union Home Minister reiterated that all agencies and resources of the central government are at the disposal of the people of Assam during this difficult time. Meanwhile, relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Sipsagar, Golaghat, Charaideo and Jorhat. With the situation gradually returning to normal, flood waters have receded from most affected localities, although some areas remain inundated. India has strongly condemned recent attacks on several maritime

0: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर मरकजी हुकूमत की सेक्रेटरियों के साथ दूसरी आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने खजाने और मईशत, तजारत और सनत और टेक्नोलॉजी से मुतालिक वजारतों और महकमों के मुस्तकबिल का लायअमल का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यह बैठक विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करने पर केंद्रित रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम भावना विकसित करने पर विशेष बल देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार के भीतर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की कार्यगत बाधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और एकीकृत एवं प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सकें। जन केंद्रित सुशासन का महत्व बतलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिक ही सदैव शासन व्यवस्था के केंद्र में रहने चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि हर निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल ऐवान में बाला में पेश किया। बिल का तारुफ कराते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया कानून मुल्क के तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ़ के लिए हुकूमत की गहरी वाबस्तगी को जाहिर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म का अदा करता है कि मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से समझौता नहीं किया जाएगा। आज सुबह गुरु पूर्णिमा के मुबारक मौके पर गोरक्ष पीठाधीश्वर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नाथ फिरके की रवायत के मुताबिक शिव अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ की खसूसी पूजा की। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने भगवान गोरखनाथ और दीगर गुरुओं को खराज अकीदत पेश किया और अवामी बहबूद के रास्ते पर उनकी रहनुमाई के लिए तहदिल से शुक्रिया अदा किया। गोरखनाथ पीठाधीश्वर ने भगवान गोरखनाथ और दीगर गुरुओं को खराज अकीदत पेश किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं यौम पैदाइश के याद में आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुल्कगीर श्री गुरु रविदास महाराज हारमोनी रेजोल्यूशन मुहिम का आगाज करेगी। इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह आज सीर गोवर्धनपुर वाराणसी संत रविदास जी की जाय पैदाइश पर किया जाएगा। वाराणसी बैनुल अक्वामी बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बत स्टडीज सारनाथ ने आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बती स्टडीज कैंपस में आषाढ़ पूर्णिमा की तकरीबात का मुश्तरका तौर पर एहतमाम किया। मेहमान खसूसी नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि भगवान बुद्ध का दरमियानी रास्ता अमन, आहंगी और इंसानी बहबूद का रास्ता। उन्होंने मजीद

0: कहा कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की तालीमात के मुताबिक तस्लीम कर रही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकज उत्तर प्रदेश की डबल इंजन वाली हुकूमत भगवान बुद्ध से जुड़े यात्राओं और विरसे के मकामात को तरक्की देने के लिए मुसलसल काम कर रही है, जिससे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से आने वाले यात्रियों के लिए आर्मी म्यार की सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार भगवान बुद्ध की महानिर्वाण के मुकाम कुशीनगर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा। गुरु पूर्णिमा, जिसे अष्ट पूर्णिमा भी कहा जाता है, बुद्ध मत में मजहबी अहमियत रखता है। सावन के मुकद्दस महीने में कांवड़ यात्रा के महफूज और पुरम इनकाद के यकीनी बनाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला में वसी इंतजाम किए जा रहे। वाराणसी आने वाले खवातीन कांवड़ियों की हिफाजत और सहूलत को तरजीह देते हुए बाबा विश्वनाथ के जल अभिषेक के लिए वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खवातीन अकीदतमंदों के लिए अलहदा रिहायश, बैतुलखला और खाने के कमरे फराहम करेगी। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के महफूज तकमील को यकीनी बनाने के लिए 30 जुलाई से 28 अगस्त तक हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर पाबंदी रहेगी। 30 जुलाई से हापुड़ के कांवड़ रास्तों पर भी रूट डाइवर्जन लागू किया जाएगा। मेरठ की जिला मजिस्ट्रेट वी के सिंह ने कहा कि तमाम मुतल्लिका कांवड़ यात्राओं की यात्रियों की मुकम्मल करने के लिए तालमेल कर रहे हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश रियासती देही रोजी रोटी मिशन ने रियासत के तमाम अजला के लिए कल 2 करोड़ तिरंगे तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया है। मिशन से वाबस्ता 50,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन इस बड़े पैमाने पर मुहिम में तिरंगे तैयार करेंगी। टाइगर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। रियासत में पिछले कुछ दिनों में शेरों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को आया है। महकमा मौसमियात ने रियासत में 3 दिन तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग दी। इधर अयोध्या, बिजनौर, संभल, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर और सहारनपुर समेत आसपास के अजला में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: जी, आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। अब पहले अपना कार्यक्रम सुनेंगी गृहलक्ष्मी।

0: गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बढ़े नशान।
1: गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल।
0: ज्ञान संस्कार और जीवन के उज्जवल पथ पर आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके रेडियो सखी शैल।
1: और मैं गुंजन।
0: नमस्कार बहनों। और आज हम उस महान शक्ति को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसके बिना ज्ञान संस्कार और जीवन की दिशा अधूरी है, वो शक्ति है गुरु।
1: जी बिल्कुल बहनों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा का उत्सव है। यह वो दिन है जब हम अपने जीवन को दिशा देने वाले उन सभी गुरुओं के प्रति एक कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनकी सीख ने हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ बहनों, गुरु वो दीपक हैं जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, शिक्षक हमारे जीवन को आकार देते हैं और अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं। इसलिए गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह शक्ति हैं जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम का उद्देश्य भी परिवार में संस्कार, प्रेम, सम्मान और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। एक गृहलक्ष्मी अपने परिवार की पहली शिक्षिका होती है। उसकी वाणी, उसके संस्कार और उसका व्यवहार आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करते हैं।

0: इसीलिए गुरु पूर्णिमा का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। आज के कार्यक्रम में हम गुरु के महत्व, परिवार में संस्कारों की भूमिका और जीवन में अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि बदलते समय में भी गुरु शिष्य परंपरा क्यों उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी।
1: बहनों, अक्सर कहा जाता है कि ज्ञान हमें सफल बनाता है, लेकिन गुरु हमें सार्थक बनाते हैं। सफलता हमें ऊंचाइयां देती हैं, जबकि गुरु हमें विनम्रता और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए जीवन में चाहे जितनी उपलब्धियां मिल जाएं, अपने गुरु के प्रति सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर यदि संभव हो तो अपने गुरु, शिक्षक या उस व्यक्ति को आप अवश्य धन्यवाद कहिए जिसने आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दी है। और यकीन मानिए, आपके दो शब्द उनके लिए सबसे बड़े सम्मान होंगे। आज जब बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तब भी एक सच्चे गुरु का स्थान कोई तकनीकी नहीं ले सकती।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि गुरु केवल जानकारी ही नहीं देते, बल्कि हमें सही निर्णय लेने के लिए हमारी बुद्धि, हमारे अच्छे जो संस्कार हैं, हमारे जो जीवन जीने की कला है, उसको भी प्रेरित करते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है गुंजन। आज के समय में ज्ञान प्राप्त करना आसान है, लेकिन सही मार्गदर्शन मिलना सबसे बड़ी बात है। एक सच्चा गुरु केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। वो हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखना सिखाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा केवल शिक्षकों को धन्यवाद देने का अवसर नहीं, बल्कि उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया। बहनों, संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान, और रू का अर्थ है उसे मिटाने वाला यानी प्रकाश। गुरु वो दीपक है जो खुद जलकर हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। और कबीरदास जी ने ठीक ही कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी भगवान से भी ऊंचा स्थान गुरु का है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक का रास्ता दिखाते हैं। ये पावन तिथि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। उन्हें वेदों का संकलनकर्ता और प्रथम गुरु माना जाता है, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं।
1: जी हाँ सखियों, इसी चर्चा पे हम आगे भी बातें करेंगे, लेकिन आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आज इस गुरु पूर्णिमा पे आइए हम सभी संकल्प लें कि अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और अपने बच्चों को भी गुरु के प्रति आदर संस्कार देंगे। तो इसी सुंदर संदेश के संग आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले पड़ाव की ओर।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो गुंजन। समय देखो एक ऐसा अदृश्य यात्री है जो न कभी रुकता है न कभी पीछे मुड़कर देखता है। घड़ी की सुइयों के साथ लगातार आगे बढ़ता समय हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है, जो पल बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता, है ना?
0: बिल्कुल, विज्ञान की दृष्टि से समय हमारे जीवन की हर गतिविधि को व्यवस्थित करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन और रात, ऋतुओं का परिवर्तन, सब कुछ समय के नियम से बंधा हुआ है। वहीं जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग ही हमें जीवन को सार्थक बनाता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो। देखो कभी समय हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है तो कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरना सिखाता है। सुख हो दुख हो, अच्छा समय हो या बुरा, हर परिस्थिति परिवर्तनशील है, इसलिए हमें वर्तमान के हर पल को समझना और उसका सदुपयोग करना चाहिए। कहा भी गया है समय सबसे बड़ा शिक्षक है, ये हमें धैर्य, अनुशासन और कर्म का महत्व समझाता है। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है, जबकि समय को व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति बाद में केवल पछताता ही रह जाता है।
0: तो आइए आज हम इसी विचार के साथ समझने का प्रयास करें कि समय का विज्ञान कहता क्या है और जीवन दर्शन हमें समय से क्या सीख लेने को कहता है। तो आइए जानेंगे एक रूपक के जरिए। वाचन स्वर है रितिका अवस्थी और कंचन पांडे जी के।
2: कालः पचति भूतानि, कालः संघर्ते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः। मैं समय हूँ, मैं सभी प्राणियों को परिपक्व करता हूँ, मैं ही सबका संहार करता हूँ। जान लो जब सब सो रहे होते हैं तब भी समय जागता रहता है। मेरी गति को कोई नहीं टाल सकता, मैं समय हूं।
3: समय घड़ी की टिक टिक करती सुइयों से निर्धारित होने वाली अवधि है या एक निरंतर बहती अविरल धारा।
4: समय तब भी था जब हम नहीं थे, ये तब भी होगा जब हम नहीं होंगे। ये किसी के लिए नहीं रुकता, नहीं थमता। अतीत को पीछे छोड़ पल पल आगे बढ़ता समय।

समय के महत्व को मानव जीवन में विज्ञान और जीवन दर्शन दोनों ने ही स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों अलग लगते हैं, पर है असल में एक ही सिक्के के दो पहलू।

0: भौतिकी यानी फिजिक्स में समय ब्रह्मांड का एक मौलिक हिस्सा है। ये चौथा आयाम है। समय और अंतरिक्ष अलग नहीं है, ये दोनों मिलकर स्पेस टाइम का ताना बाना बनाते हैं। समय भौतिकी का वो आयाम है जो घटनाओं को अतीत से वर्तमान और भविष्य की तरफ एक रैखिक क्रम में मापता है, यानी एक आगे की ओर बढ़ती लाइन की तरह।
1: बहुप्रचलित आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत के अनुसार समय कोई स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलता है, धीमा या तेज हो सकता है। बहुत तीव्र गति से यात्रा करने वाले के लिए समय धीमा हो जाता है।
0: थर्मोडायनामिक्स का नियम कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ता है। घटनाओं का उल्टा न होना ये बताता है कि समय केवल एक ही दिशा यानी आगे की ओर चलता है। इसे एंट्रोपी और समय का तीर कहते हैं। भौतिकी में समय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर आशुतोष शुक्ला।
2: 20वीं सदी के आरंभ में जे. हेनरी पाइकारे ने ऐसा सुझाव दिया था कि समय का अंतराल और लंबाई ये दोनों ही ऑब्जर्वर पर निर्भर होते हैं, और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि प्रकाश की चाल एक अजेय सीमा की तरह है। इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने 16 वर्ष की आयु में एक नए दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सोचा कि प्रकाश की किरण के साथ यात्रा करना कैसा होगा। 1905 में यह बात सामने आई कि भौतिकी के नियम और प्रकाश की चाल एक समान गतिमान प्रेक्षकों के लिए समान होनी चाहिए, चाहे उनकी सापेक्ष गति कुछ भी हो। इस बात के सत्य होने के लिए स्पेस और समय स्वतंत्र नहीं हो सकते, बल्कि वे एक दूसरे में इस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं कि सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश की गति स्थिर बनी रहे। यही कारण है कि गतिमान वस्तुएं सिकुड़ती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि फिट्ज़गेराल्ड और लॉरेंस ने अनुमान लगाया था। और यही कारण है कि गतिमान प्रेक्षक समय को अलग अलग ढंग से माप सकते हैं, जैसा कि पाइकारे ने परिकल्पना की थी। तो ये लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे कह सकते हैं कि स्पेस और समय सापेक्ष हैं, अर्थात वे उन्हें मापने वाले प्रेक्षक की गति पर निर्भर करते हैं, और प्रकाश इन दोनों से कहीं अधिक मौलिक है। यही आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत का आधार है। अगर आप इस बात को उदाहरण से समझना चाहें, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा से लौटने पर अपने जुड़वां भाई अथवा बहन की तुलना में युवा होगा। आप कल्पना कीजिए, यह प्रभाव तभी स्पष्ट होगा जब चाल प्रकाश की चाल के करीब हो। आइंस्टीन की थ्योरी के तीन मुख्य पहलू हैं। पहला है टाइम डायलेशन, स्पेस टाइम दूसरी बात है, और तीसरी बात है अतीत और वर्तमान का भ्रम। टाइम डायलेशन का मतलब हुआ कोई व्यक्ति या चीज जितनी तेजी से प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, स्थिर खड़े व्यक्ति की तुलना में उसका समय उतना ही धीमा चलता है। स्पेस टाइम का मतलब है स्पेस की तीन विमाओं और समय की एक विमा, इनको मिला करके चार विमीय जाल की कल्पना, इसी को स्पेस टाइम कहते हैं। और तीसरी बात अतीत वर्तमान और भविष्य, इसके बीच का जो अंतर है, जो हम अंतर करते हैं, वो एक भ्रम है। असल में समय के सभी बिंदु एक स्थायी कॉस्मिक ब्लॉक में एक साथ मौजूद होते हैं।
1: भौतिकी ने समय के विज्ञान पर व्यापक शोध किया और नए मानदंड स्थापित किए। विज्ञान का ही एक क्षेत्र मनोविज्ञान, जिसमें समय को बहुत ही रोचक तरीके से समझाया गया। समय वही होता है, पर हमारी मनःस्थिति से उसकी गति प्रभावित भी होती है और बदलती भी है। जब हम खुश होते हैं तब समय

0: उड़ जाता है, पर जब हम उदासीन स्थिति में होते हैं तो चंद मिनट भी घंटों समान लगते हैं। मनोविज्ञान ने समझाया कि समय वस्तु नहीं है, हमारा अनुभव है। समय के परिपेक्ष में भौतिकी और जीवन दर्शन के समन्वय को बताते हुए भौतिकी विज्ञान के प्रवक्ता मयंक श्रीवास्तव।
1: विज्ञान के अनुसार समय अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की स्थिति बताने वाला आयाम कहा गया है। आइजैक न्यूटन के अनुसार समय पूर्ण है, अर्थात एब्सोल्यूट है, यह हमेशा बढ़ता है चाहे हम इसे नापें या ना नापें। उन्होंने कहा कि समय पूर्ण है, परंतु आइंस्टीन ने न्यूटन के विचार को बदला और कहा कि समय पूर्ण या एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि एक रिलेटिव है, एक सापेक्ष है। समय व अंतरिक्ष मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। समय हमेशा आगे भागता है, पीछे नहीं। आध्यात्मिक व दर्शन दृष्टिकोणों में समय घड़ी की सुइयों से परे है, अतः नापा नहीं जा सकता, आत्मा व चेतना का स्तर देखता है। हिंदी दर्शन में काल तथा माया दो चीज़ें प्रचलित हैं। काल को समय कहा गया है, जो परिवर्तन का प्रतीक है, और समय का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक हमारा शरीर इस भौतिक जगत से जुड़ा है। साइक्लिक ऑर्डर में विज्ञान एक सीधी सरल रेखा में चलता है, जबकि आध्यात्मिकता समय को चक्र मानती है, जैसे कि एक युग से दूसरा युग, दूसरे से तीसरा और पुनः लौटकर प्रारंभ। जीवन को सार्थक बनाने के लिए भौतिक प्रगति के साथ साथ मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति का तालमेल अति आवश्यक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान समय के बाहरी रूप को मापता है, जबकि आध्यात्म समय की आंतरिक आत्मा को समझता है।
2: जब बात की जाए जीवन दर्शन की, तो जीवन दर्शन कहता है कि समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं, बल्कि जीवन की चेतना है, अतीत स्मृति है, भविष्य संभावना है और वर्तमान ही वास्तविकता है। मनुष्य अतीत को बदल नहीं सकता और भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान के कर्म से भविष्य का निर्माण जरूर कर सकता है।
0: भौतिक विज्ञान और जीवन दर्शन को एक ही धरातल पर लाकर दोनों दृष्टियों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने गहरे जीवन सूत्र आते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अवसर को पहचानना आवश्यक है।
2: समय परिवर्तन का नियम है, इसलिए सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं।
0: समय के मनोवैज्ञानिक पक्ष को बताते हुए डॉक्टर स्तुति सिंह।
3: कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं, बल्कि जीवन का सबसे मौन और प्रभावशाली आस्पेक्ट है। यदि आप मनोवैज्ञानिक आस्पेक्ट से देखें तो समय केवल बीतता नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं को एक आकार देता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, या आप ये मानते भी होंगे कि समय सब ठीक कर देता है। वास्तव में समय हमारे घावों को भरने, भावनाओं को संतुलित करने और हमें नई परिस्थिति के अनुसार ढलने का अवसर देता है। इसके साथ ही साथ यह भी उतना ही सत्य है कि यदि समय का सही उपयोग ना किया जाए तो वही समय हमें हमारे अवसरों से दूर भी कर देता है। इसलिए समय केवल उपचार नहीं करता, वह परीक्षा भी लेता है। समय का जीवन दर्शन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है और इसके साथ ही बीता हुआ जो हमारा समय है वो अनुभव बनकर हमारे सामने आते हैं, और आने वाला समय हमें नई पॉसिबिलिटीज़ देता है, और जो हमारा वर्तमान है वो हमारे कर्म का अवसर है, जहाँ हमारे पास पूरी संभावनाएं होती हैं कि हम कैसे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसके जीवन को बहुत ही मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण बना देता है।
0: जैसे हर क्षण ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसी प्रकार जीवन का हर अनुभव व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
2: जैसे ब्रह्मांड में हर घटना समय के साथ विकसित होती है, वैसे ही मनुष्य भी धैर्य, अभ्यास और निरंतर प्रयास से ही विकसित होता है।
4: भौतिकी विज्ञान और दर्शन शास्त्र में समय की अवधारणा का तुलना

0: संख्यात्मक विश्लेषण करते हुए डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह।
1: समय बहुत ही में पैरामीटर के रूप में यूज होता है। न्यूटनियन मैकेनिक्स में यह समय एब्सोल्यूट है, लेकिन रिलेटिविटी के जो सिद्धांत है उसमें जो समय है वो एब्सोल्यूट नहीं है। गति के साथ वो धीमा हो जाता है, जिसे टाइम ऑफ डायलेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और साथ ही साथ एक ही घटना विभिन्न ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग समय पर होती दिखती है। अगर हम इसको दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ते हैं, दर्शन शास्त्र में प्रेजेंटिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें बताया जाए केवल वर्तमान ही वास्तविक है, अतीत और भविष्य का मौजूद नहीं है। अब यह जो कॉन्सेप्ट दर्शन शास्त्र बता रहा है यह फिजिक्स के सापेक्षता के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाता है, क्योंकि सापेक्षता के अनुसार एक ही वर्तमान अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दर्शन शास्त्र में इटर्नलिज्म का है, जहाँ पर अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों मौजूद होते हैं, और यही सापेक्षता के सिद्धांत के साथ पूरी तरह मेल खाता है। गोलन ब्लॉक थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें अतीत और वर्तमान तो मौजूद है लेकिन भविष्य नहीं। यह सापेक्षता के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता फिजिक्स के सापेक्षता के साथ, लेकिन इसको भौतिकविद बहुत पसंद करते हैं। कई भौतिकविद कहते हैं कि समय हमारी चेतना का अनुभव है, न कि भौतिकी का मूल गुण। जैसे आप एक किताब है द ऑर्डर ऑफ टाइम, इसमें कहा गया है कि जो समय है वो मूल रूप में नहीं है, यानी एंट्रोपी, गुरुत्वाकर्षण, हमारी धारणा, इन सबका परिणाम है।
2: भारतीय दर्शन की दृष्टि से समय या काल को सृष्टि की सबसे महान शक्ति माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूँ जो परिवर्तन और सृष्टि के क्रम का नियंता है।
3: यहाँ काल केवल विनाश नहीं बल्कि सृजन, परिवर्तन और पुनर्निर्माण का भी प्रतीक है।
2: आयुर्वेद चिकित्सा में समय के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए एमडी डॉक्टर एकता तिवारी।
4: आयुर्वेद में मानव शरीर की प्रकृति का निर्धारण वय या काल के द्वारा होता है, जैसे बाल्यावस्था में कफ प्रकृति, युवावस्था में पित्त प्रकृति एवं वृद्धावस्था में वात प्रकृति। हमारी जठराग्नि की अवस्था का निर्धारण भी काल से ही होता है, यहाँ तक कि किस व्यक्ति की चिकित्सा करनी है या नहीं करनी है इसका भी निर्धारण रोग की अवस्था एवं यह रोग कितना पुराना है इससे तय किया जाता है। आयुर्वेदाचार्यों द्वारा बताई गई दिनचर्या एवं ऋतुचर्या ये सभी काल पर ही आधारित हैं। हमें किस ऋतु में किस चीज का सेवन करना है, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा विहार कैसा होना चाहिए, यह सभी कुछ काल पे ही आधारित है। यहाँ तक कि गर्भिणी परिचर्या भी गर्भावस्था के काल पर ही आधारित होता है। काल को मृत्यु सूचक रूप में देखते हैं, तब इसका विस्तृत वर्णन चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में पाया जाता है, जहाँ अरिष्ट लक्षण या मृत्यु सूचक लक्षणों की व्याख्या की गई है, जो यह सूचित करते हैं कि अगर किसी रुग्ण में हमें कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं तब उसकी मृत्यु निकट है। अतः आयुर्वेद में काल का बहुत ही विशेष, विस्तृत और सुंदर वर्णन किया गया है और यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग और स्तंभ है।
3: जहां एक ओर हमारा भौतिक विज्ञान हमें सिखाता है कि समय ब्रह्मांड का अपरिवर्तनीय नियम है, वहीं दूसरी ओर हमारा जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि समय का सर्वोत्तम उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। एक सुंदर सूत्र इस विचार को समेटता है कि समय को घड़ी से मत मापिए, उसे अपने कर्मों से मापिए,
2: क्योंकि बीता हुआ समय इतिहास बनता है, वर्तमान कर्म बनता है और वही कर्म भविष्य का भाग्य लिखता है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान समय का स्वरूप समझाता है और जीवन दर्शन समय का सदुपयोग सिखाता है। दोनों मिलकर बताते हैं कि समय केवल बीतता नहीं बल्कि

अभी बहनें सुन रही थी रूपक समय का विज्ञान और जीवन दर्शन। वाचन स्वर थे रितिका अवस्थी और कंचन पांडे जी के। तो बहनों आइए, अब बारी है एक गीत की, तो सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बात है, हमें किसी का मुंह नहीं
1: देखना, पड़ता है बिल्कुल। तो बहनों चिमनी और एग्जॉस्ट फैन की सफाई बहुत ही आसान है और हम आपको बताएंगे ज़रूर कि करना कैसे है। तो देखिए कुछ भी अगर आप ये काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से अपना जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले बिजली का कनेक्शन भाई बंद कर दीजिए और चिमनी के फिल्टर को निकाल कर गर्म पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड से उसको पहले साफ करिए। अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे ना तो उस पर जो जमी हुई चिकनाई होती है तो वो थोड़ा रब करना आसान हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन की जो जाली होती है और जो उसके ब्लेड्स होते हैं उसको भी अच्छी तरह से साफ करिए। अच्छा पता है शैल दीदी, हम तो ऐसे करते हैं जो ब्रश होता है ना, टूथब्रश, हाँ अमूमन वो जैसे एक दो मिसयूज वाले रहते हैं, तो मैं उसी से करती हूँ। तो जो महीन जाली की जो छेद होते हैं ना उनको निकालना आसान हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप भी उस चीज को, इस टिप्स को फॉलो कर सकती हैं। साथ ही जो मोटर और बिजली के हिस्सों पर सीधे आपको पानी भाई नहीं डालना है, है ना, वो अगर उनके अंदर पानी चला जाएगा तो वो खराब
0: मोटर में पानी गया तो खराब,
1: हाँ, और फिर वो क्योंकि इतनी वो सूखेगा नहीं तो फिर वो जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सभी हिस्सों को आप अच्छी तरह से, जो मैंने अभी कहा कि सुखा करके, जब आपको ये लगे कि अब इनका जो नमी है, पानी की जो मॉइस्चर है वो हट गया है, उसके बाद ही उसको दोबारा फिक्स करें, लगाइए। और एक बार आराम से जब आप ऑन करिए तो अपनी सेफ्टी के संग आप चप्पल पहन के रखिए जो भी है, तो तभी आप उसको ऑन करिए वहाँ से।
0: बिल्कुल सही कह रही हो गुंजन, बहुत ही अच्छी तुमने बहनों को जानकारी थी, साथ में मैं भी इस चीज़ को सीख ली, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी ऐसा कुछ होता है खराब तो हम तो बैठे मुंह देख रहे हैं कि कब हस्बैंड आए और कब वो किसी
1: बुलाएं या खुद करें,
0: साफ हो नहीं तो फिर लगता है ना बड़ा मन बोझिल होता है, काम अभी हुआ नहीं हुआ नहीं। जब अपने हाथ का हुनर होता है तो सही बात है कि काम अच्छा ही होता है। तुमने बहुत ही ईजी वे में बताया कि कैसे करना है।
1: देखिए जब वो उसकी साफ हो जाता है जाली वाली तो खुद को भी अच्छा लगता है। अच्छा जो भी चीज़ हम खाना बना रहे हैं उसका जो धुआं है वो इजिली अपना आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो यही चीज़ें हैं, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, भारी कुछ भी नहीं है, तो लेकिन ये कि उनको हम किस दिशा में कर रहे हैं वो मायने रखता
0: है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अभी तुमने जितने इजी वे में बताया है, जानकारी ना होने की वजह से हमको बहुत ज़्यादा वो बर्डन लगता है, अरे हम कैसे हो, कहीं ऐसा ना कुछ हो कि हमने ऐसा कर दिया कहीं खराब हो गया, है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम अच्छे वे में उसको जानकारी ले लें और अपने घर का काम खुद कर लें। और देखो चिमनी और एग्जॉस्ट फैन के नियमित सफाई करने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर बनी रहती है और रसोई का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। तो भाई ये तो रही चिमनी और एग्जॉस्ट फैन की नियमित सफाई। और
1: हम अब एक अपनी बहनों को सुना देते हैं गीत।

0: वाह भाई, वाकई में गुंजन, जीवन चलने का ही नाम है और चलना ही जिंदगी है। चाहे वो दुख हो सुख हो, हर हाल में हमें चलना है
1: चलना
0: और
1: है
0: खुश होकर चलना
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो भाई, गीत के बाद हम बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और लेकर आए हैं, जो कि घर बैठे बहनें खुद ही कर सकती हैं, वो है चिमनी और एग्जॉस्ट फैन की सफाई। तो गुंजन, खोलो अपने ज्ञान का पिटारा।
1: हाँ भाई बिल्कुल भाई, ये तो हमारी जो घर में जो हमारी गृहलक्ष्मी है उनके लिए तो ये दैनिक चीज़ का काम है कि
0: बिल्कुल।
1: भाई आप रसोई में काम कर रही हैं तो जो आपकी चिमनी है और ये सब आए दिन गंदे होते रहते
0: और
1: हैं,
0: जब
1: तो
0: अपने हाथ में हुनर होता है
1: हाँ
0: तो जाहिर

0: भाई देखो, इस गीत के साथ ही देखो हमारी घड़ी भी अब इशारा कर रही है कि अब हम बहनों से विदा लेने का समय आ गया है। तो बहनों, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे मेल आईडी के ज़रिए। और गुंजन, मेल आईडी तो हमारी बहनों को पता ही है ना, GriLakshmipalsingh123@gmail.com। तो अब बहनों से विदा लें, अगली बार हम फिर मिलेंगे अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: जो बढ़कर के अब 100 हो गई।
1: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
3: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
2: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा के कार्य

0: कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
4: हाँ।
3: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
4: असम में शिवसागर, घोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को

0: अनुग्रह राशि प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
3: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
4: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी, वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी, वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
1: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

0: इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओ, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक

0: सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405-559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ हाँ।
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ, हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमा। हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हाँ, हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा,

सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति हैं जॉन लोगी बेयर्ड। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर्ड
2: जी। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो यह बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, यह संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए।
2: आइए इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों को विश्वास नहीं होता। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अन अनबिलीवेबल मिरेकल।
2: वाओ, शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। हमारा आज की ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अगले समय में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं शिप्रा श्रीवास्तव,

और करूँगी ढेर सारी बातें। श्रोताओं, आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के ऊपर सबसे अच्छा जो संदेश है वो ये है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद को दिखाने वाले, जीवन की सच्ची राह बताने वाले और जीवन का अंतिम लक्ष्य को पहचान कराने वाले गुरु के ऊपर आज का दिन न्योछावर है, बलिदान है और समर्पित है। और उन गुरु को हम याद करते हैं आज के दिन जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। जी हाँ, जीवन जीने की कला, वो कला जो हमें बताती है कि हम अपने को कैसे संयमित रखें, कैसे अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालें और किस तरीके से अपने को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक, सतर्क और सावधान रखें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसा मार्ग अपनाएं। और उन्हीं गुरुओं को आज का दिन समर्पित है, हम याद करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उन गुरुओं को। जीवन के फलसफे सिखाने वाले कुछ गीत आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज के कार्यक्रम के पहले गीत से।

बिल्कुल सही बात है। इस गाने में बहुत ही खूबसूरत सी बात कही गई है कि चलने का नाम ही जिंदगी है, जो रुक गया वो गंदे पानी की तरह एकदम जीवन असफल हो जाएगा। तो जीवन को सफल बनाना है तो आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर होते रहना है। तो जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा वर्तमान का पल है। आप बिना किसी पछतावे के जीते हैं और काम में मन लगाते हैं तो मन में शांति बनी रहती है। और सबसे अच्छी और सुकून भरी जिंदगी उन लोगों की होती है ना दोस्तों, जो अतीत को याद नहीं रखते और ना ही भविष्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जो जीते हैं वो सिर्फ वर्तमान को याद करके जीते हैं। और अगला गीत हमें सिखा रहा है कि हम कैसे अपने को बैलेंस करें। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, हमें अपने को बैलेंस करना है, अपने मन को समझाना है कि जो होगा अच्छा होगा और जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हुए चलें, क्योंकि ईश्वर हमें प्रेरणा देते हैं अगर हम उनको याद रखते हैं तो। उनको याद करते चलें, उनकी राह पर चलते चलें और उनके बताए मार्ग को हमेशा अपने जहन में रखें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, हमारी मन में शांति होगी और हम हर परिस्थितियों में अपने को खुश रख पाएंगे।

और अंत में आपको सुनवा रहे हैं वो गीत जो हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों को भी खुश करता है और अपने लिए खुश रखने का एक रास्ता दिखाता है।

सत्य, अहिंसा, प्रेम, यही है जीवन के अनमोल शिक्षा के सूत्र, और इनको अपने जीवन में उतारें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इसी बात के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं समाप्त। ये है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। थोड़ी देर में युवजन सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयाग

0: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, शाम की इस सुनहरी बेला में मन में नई उमंग और आपके अपने युवाणी के एक नए एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज मैं हूँ आपकी होस्ट ज्योति
1: और मैं हूँ आपकी साथी सेजल। वैसे ज्योति,
0: हाँ,
1: इस लाइफ की मतलब इतनी बड़ी पाठशाला में हम सभी स्टूडेंट्स हैं। कोई किताबों से सीखता है, कोई अपने एक्सपीरियंस से, तो कोई उन महान व्यक्तियों से जो बिना किसी स्वार्थ के हमें सही राह दिखाते हैं। वे केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानना और उन्हें नई उड़ान देना, यही एक सच्चे गुरु की पहचान है।
0: बिल्कुल, हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु केवल ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले प्रकाश स्तंभ माने गए हैं। जब जब जीवन की राह धुंधली पड़ती है, गुरु का ज्ञान दीपक बनकर हमारा मार्ग आलोकित करता है। और इसी अटूट गुरु शिष्य परंपरा, श्रद्धा और कृतज्ञता को समर्पित है आज का ये पर्व गुरु पूर्णिमा।
1: और कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। गुरु पूर्णिमा भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का अत्यंत पावन और प्रेरणादायी पर्व है। ये पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेद व्यास से भी है, जिन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का महान ऋषि माना जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की और 18 पुराणों की रचना का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। माना जाता है कि उनका जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल दोस्तों, गुरु का अर्थ केवल विद्यालय या महाविद्यालय के शिक्षक तक सीमित नहीं है। हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रशिक्षक और यहाँ तक कि जीवन के अनुभव भी हमारे गुरु बन जाते हैं। और आज के समय में जब इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी नहीं है, तब भी एक सच्चे गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है। शायद जानकारी हमें बहुत कुछ बता सकती है, लेकिन सही और गलत का विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन, धैर्य और जीवन का मूल्य, ये सब गुरु के मार्गदर्शन से ही विकसित होते हैं।
0: और सभी युवाओं के लिए गुरु पूर्णिमा का संदेश बिल्कुल साफ है। अपने जीवन में ऐसे लोगों का सम्मान करें जो आपको बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न पूछिए, सीखते रहिए, विनम्र रहिए और अपने गुरुओं के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सभी अपने गुरुओं को हृदय से नमन करते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, आज का एपिसोड किसी नॉर्मल शो जैसा नहीं होने वाला। आज हम चलने वाले एक वर्चुअल ट्रिप पर, एक ऐसी जगह जहां सूरज भारत को सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहता है, जहां की हर पहाड़ी पर संगीत है, हर नदी में एक कहानी है, और हर हवा में क्या वाइब है।
2: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारे पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट

0: इंडिया की, जहाँ भारतीय संस्कृति का सौंदर्य अपने सबसे खूबसूरत और यूथफुल रूप में खिलता है। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, चाय या कॉफी का मग उठा लीजिए और वाइब को कीजिए सेट।
1: क्योंकि जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम आपको लेकर चलने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो हमारे उत्तर पूर्व भारत की जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की परंपरा, मतलब उसमें कुछ बात तो है ना सिंगर?
0: बिल्कुल। और जब बात हो नॉर्थ ईस्ट की, तो दिमाग में पता है क्या आता है?
1: क्या आता है?
0: वो हरी भरी पहाड़ियाँ, बादलों से ढके रास्ते।
1: बट वेट, पूर्वोत्तर भारत सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं है, ये आठ राज्यों की एक ऐसी कूल गैंग है जिनकी संस्कृति भारतीय सभ्यता का एक नायाब गहना है। हम इन्हें कहते हैं सेवन सिस्टर्स।
0: और जिसमें सबसे पहले ज्योति, असम की चाय की मिठास और बिहू का जोश का क्या ही कहना।
1: बिल्कुल। तो वही मेघालय, बादलों का घर और भारत की म्यूजिकल कैपिटल,
0: और मणिपुर की रासलीला का डिवाइन डांस और मार्शल आर्ट्स का थ्रिल।
1: तो वही मिजोरम, जहाँ की सफाई और डिसिप्लिन देखकर पूरा देश सीखता है।
0: और इसी में नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल और रॉकिंग यूथ कल्चर।
1: त्रिपुरा एंड अरुणाचल को हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ का इतिहास, अध्यात्म और उगते सूरज की किरणों का एक मिलना जो होता है ना, वो क्या अद्भुत दृश्य देता है ना।
0: हाँ, और हम सिक्किम को भी तो नहीं भूल सकते, कंचनजंगा की छाव में सुकून भरा एक सुंदर सा सपना। पता है सबसे खास बात क्या है?
1: क्या है?
0: यहाँ की ट्राइब का अपना पहनावा, अपनी भाषा और अपना संगीत है, फिर भी सब एक भारत के धागे में ऐसे पिरोए हैं जैसे कि एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट हो।
1: बिल्कुल। दोस्तों, अक्सर जब हम संस्कृति या फिर कल्चर शब्द सुनते हैं तो लगता है कि ये कोई पुरानी किताब की बात होगी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कल्चर का मतलब पुरानी बातें नहीं, वो लिविंग, ब्रीदिंग और कूल, इन सब चीज़ों में विश्वास करता है। कभी मणिपुर का थांगता मार्शल आर्ट देखा है भाई? जब वो तलवार और ढाल के साथ मूव्स करते हैं ना, तो बॉलीवुड के एक्शन सीन्स भी फीके लगने लगते हैं।
0: और असम का बिहू डांस, जब पेपा और ढोल बजता है तो पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। और सबसे कमाल की बात आपको पता है क्या है? वो है नॉर्थ ईस्ट के यूथ। आज ये नॉर्थ ईस्ट का यूथ अपनी जड़ों से तो जुड़ा ही है, साथ ही स्टाइल में 100 में से 100 नंबर लाते हैं। वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा जैसे मिजो का पुआन या असम की मेखोला चादर को ऐसे मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पहनते हैं कि पेरिस फैशन वीक वाले भी देखते रह जाएं।
1: बिल्कुल। संस्कृति का यही तो असली सौंदर्य है, अपनी पहचान पर गर्व करना और उसे दुनिया के सामने स्वैग के साथ प्रेजेंट करना।
0: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, और हम साथ में साथ ही साथ वर्चुअल ट्रिप भी कर रहे हैं। तो जब हम ट्रिप की बात करें और उसमें खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप फूडी हैं तो नॉर्थ ईस्ट भारत आपके लिए जन्नत है। लेकिन यहाँ के खाने की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है आपको पता है? यहाँ की सिंप्लिसिटी और नेचुरल होना। यहाँ पर डिब्बा बंद या फिर प्रोसेस्ड फूड नहीं, बल्कि सब कुछ फ्रेश, जमीन से जुड़ा हुआ होता है। असम का माछोर टेंगा, नागालैंड का बैम्बू शूट या सिक्किम का गर्मा गर्म मोमोज और थुक्पा, आह आपके मुंह में भी पानी आ गया ना।
1: और वैसे ज्योति, एक बात जो हम सबको पूर्वोत्तर भारत के लोगों से, मतलब यहाँ के लोगों से सीखनी चाहिए, वो पता है क्या है?
0: क्या है
1: वो? है रिस्पेक्ट फॉर नेचर। मेघालय का मावलिनोंग गांव पूरे एशिया का सबसे साफ गांव है। वहाँ के बच्चे को पता है कि पर्यावरण को साफ कैसे रखना है। वहाँ पत्थरों और लोहे के पुल नहीं, बल्कि पेड़ की जड़ों से बने लिविंग रूट ब्रिजेस हैं। और ये केवल सुंदरता नहीं है दोस्तों, ये भारतीय दर्शन का वो हिस्सा है जो सिखाता है कि नेचर इज एवरीथिंग।
0: एग्जैक्टली। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने पूरे भारत में पूर्वोत्तर का डंका बजा रखा है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स और म्यूजिक की। मीराबाई चानू हो, मैरी कॉम हो, बायचुंग भूटिया हो या फिर लवलीना बोरगोहेन हो, भाई नाम गिनते गिनते रात हो जाएगी, लेकिन वहाँ का जो यूथ है ना, उनका जज्बा लगातार बना रहेगा। भाई बने भी क्यों ना रहे, वहाँ के जो युवा हैं, यूथ है, उनका जो जज्बा है फिटनेस और डिसिप्लिन को लेके, पूरे देश के यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। जब ओलंपिक में तिरंगा लहराता है ना, तो दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है। और वहाँ का म्यूजिक, अरे भाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों की वेंस में गिटार और रिदम दौड़ता है। शिलोंग को तो भारत की

0: रॉक कैपिटल कहा जाता है। वहाँ के हर दूसरे घर में आपको एक शानदार म्यूजिशियन मिल जाएगा। जुबिन गर्ग से लेकर पैपॉन तक यहाँ के संगीत ने पूरे भारत के दिलों को जीता है।
1: और पूर्वोत्तर भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक हिस्सा नहीं है, वो हमारी भारतीय संस्कृति की धड़कन है। कई बार दूरी की वजह से हम एक दूसरे की संस्कृति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन जब आप असम के बिहू डांस की लय सुनेंगे, नागालैंड के युवाओं का गिटार सुनेंगे या फिर मणिपुर की रासलीला की भक्ति देखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि हमारा दिल एक ही ताल पर धड़कता है। और वैसे ज्योति, तुम्हें नहीं लगता है कि ट्रेंड्स बदलते रहते हैं? फैशन भी बदलता है भाई, पसंद भी हमारी बदलती है, टेक्नोलॉजी भी बदलती है, लेकिन एक चीज जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती है वो है अपनी जड़ों से जुड़ाव, अपनी संस्कृति पर गर्व।
0: बिल्कुल सेजल, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री करती हूँ। और तुम्हें पता है हमारे आज के यूथ की सबसे खास बात क्या है?
1: क्या
0: आज की खास बात ये है कि हम अपने रूट्स को जानते हैं, पहचानते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। और उसके साथ और खास बात ये है कि हम अपने रूट्स के साथ मॉडर्न कल्चर को भी ब्लेंड कर रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम देखें तो अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें या फिर अपने जो पहनावे उसकी बात करें, तो हम ट्रेडिशनल वेयर में देखेंगे कि कुर्ती के साथ हम जीन्स वेयर करते हैं, है ना। तो वहीं कभी कभी देखा होगा कि हम साड़ी के साथ भी कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम अपना कोई टॉप पहन लेते हैं, फिर उसको डिफरेंट स्टाइल में वेयर करते हैं साड़ी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यूथ है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है कि अपनी रूट्स को और मॉडर्न कल्चर को कैसे एक साथ लेके चलना है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने।
0: और इसी के साथ हम सब कहते भी है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका असली उदाहरण जो है ना, वो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। खूबसूरत लोग, खूबसूरत सोच और उससे भी खूबसूरत उनकी संस्कृति। अगर आपने अभी तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सफ़र नहीं किया ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाइए, बैकपैक उठाइए और निकल पड़िए इस जादुई दुनिया को एक्सप्लोर करने।
1: वैसे तुमने इतना बोल ही दिया है, बैकपैक उठाइए, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, मतलब हमने इतनी सारी नॉर्थ ईस्ट की बात की जहाँ पे मुझे भी सीरियसली अब मन कर रहा है कि वहाँ जाकर वो जगह का एक्सप्लोर करना। नहीं, वहाँ के तुमने पहली चीज़ तो तुमने इतने सारे खाने, इतने टेस्टी फूड्स बताए, वहाँ के पहनावा कल्चर, क्योंकि हमारी ये होता है ना कि हमें हमें कुछ ना कुछ नया फॉलो करना होता है। मतलब कोई नई चीज़ ट्राई करने का वो तो जज्बा रहता है कि वो एक्साइटमेंट जो होती है ना, वहाँ कल्चर हो चाहे फूड हो चाहे कुछ भी हो, हमें बस वहाँ जाने, मुझे तो सीरियसली जाने का मन कर रहा है दोस्तों। इफ आपको भी आज की ये चर्चा से कुछ तो कुछ ना एक्सप्लोर करने का मन करेगा तो आप भी जरूर जाइएगा, जैसे ज्योति ने कहा। वैसे ज्योति एक बात बताओ, तुम्हें मन नहीं कर रहा है?
0: अरे बिल्कुल, तुम्हें पता है सेजल, मैं ना कभी भी नॉर्थ ईस्ट नहीं गई हूँ, तो अभी जब मैंने अपने दोस्तों के साथ इतनी सारी बातें शेयर की ना, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड में भी वो पिक्चर्स ऐसे फ्लैश हो रही हैं कि वहाँ पे ऐसा होता होगा, इस तरह से लोग ऑर्गेनाइज होंगे, वहाँ के लोग का पहनावा ऐसा होगा, तो दिमाग में एक पिक्चर फॉर्म हो रही है और उस पिक्चर को जो फॉर्म हो रही है ना, मेरा भी मन करने लगा वहाँ पर जाने का।
1: तो उम्मीद है आपको पूर्वोत्तर भारत की संगीत में और सांस्कृतिक ट्रिप में उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आपके साथ शेयर करने में आया। तो आप सभी के लिए ये प्यारा सा मैसेज है कि अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए, नई जगहों को एक्सप्लोर कीजिए और हमेशा एनर्जेटिक रहिए।

0: कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी। नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत,

0: ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी कि प्रेरणा पुंज की ओर। और कहा जाता है कि समय के साथ इमारतें पुरानी हो जाती हैं, लेकिन महान व्यक्तित्वों के विचार समय के साथ और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। और ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाने में है।
2: आज के प्रेरणापुंज ऐसे ही दूरदर्शी व्यक्ति को समर्पित है, जिनकी सोच सीमाओं से बंधी नहीं थी। उन्होंने सपने भी बड़े देखे और उन्हें साकार करने का साहस भी दिखाया। जब भारत नई संभावनाओं की तलाश में था, तब उन्होंने उद्योगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, विज्ञान और तकनीक को प्रोत्साहन दिया, कर्मचारियों को सम्मान और सर्वोच्च स्थान दिया। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही महान उद्योगपति, भारत के प्रथम लाइसेंस प्राप्त पायलट और राष्ट्र निर्माण के सच्चे कर्मयोगी जहांगीर रतनजीव दादा भाई टाटा, जिन्हें पूरा देश स्नेह और सम्मान से JRD टाटा के नाम से जानता है।
1: उनका मानना था किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी मशीनें नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले लोग होते हैं। इसलिए उन्होंने लाभ से पहले विश्वास, प्रतिस्पर्धा से पहले गुणवत्ता और सफलता से पहले मानवीय मूल्यों को महत्व दिया। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन जी दादा भाई टाटा था। JRD टाटा का बचपन फ्रांस, इंडिया और जापान जैसे विभिन्न देशों में बीता, इसलिए उन्हें अलग अलग संस्कृतियों को समझने का अवसर मिला। वो बचपन से ही अनुशासित, जिज्ञासु और नई चीज़ें सीखने के इच्छुक थे। उन्होंने मशीनें, विज्ञान और विशेष रूप से हवाई जहाज़ों से बहुत लगाव था।
2: और साल 1929 में JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। उस समय विमान उड़ाना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और साल 1932 को उन्होंने कराची के अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक
1: कोरियर लेकर उन्होंने विमान उड़ाया।
2: बिल्कुल, और यही उड़ान भारत के नागरिक विमानन की शुरुआत बनी। इसी से टाटा एयरलाइंस की नींव पड़ी, जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी।
1: और 34 साल की आयु में वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में ये समूह स्टील, ऑटोमोबाइल, बिजली रसायन, होटल, सूचना प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ा। उनका मानना था कि अगर कर्मचारी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे, तभी संस्था आगे बढ़ेगी।
2: JRD टाटा ने शिक्षा अनुसंधानों और चिकित्सा और सामाजिक विकास से जुड़े अनेक संस्थानों को बढ़ावा दिया। टाटा ग्रुप ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: और उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया, जिसमें पद्म विभूषण और साल 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं।
2: और दोस्तों, आज के युवाओं के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। कई बार असफलता हमें निराश कर देती है, लेकिन टाटा का जीवन हमें बताता है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम होती है। अगर हमारे पास बड़ा सपना, सही सोच और दृढ़ संकल्प है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथियों, मेहनत को अपना साथी बनाइए और ईमानदारी को अपनी पहचान।

0: वैसे ज्योति, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में हर पल कीमती है? और स्पेशली हम यूथ का समय तो सबसे ज्यादा कीमती होता है। और वैसे यही वो समय है जब हम अपने सपनों को पहचान सकते हैं, अपने गोल्स तय कर सकते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत शुरू कर सकते हैं। इस उम्र में किया गया हर छोटा कदम आपके भविष्य की बड़ी सफलता बन सकता है। पढ़ाई और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना सिर्फ मार्क्स या डिग्री तक सीमित नहीं है, ये आपको अपने अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस भी सिखाता है। जो मेहनत आप आज लगाते हैं वही आपके कल को शेप करती है।
1: बिल्कुल सेजल, याद रखिए दोस्तों, हर सेटबैक सिर्फ एक सीख है और हर कोशिश आपको आपके गोल के और करीब ले जाती है। इसीलिए चाहे एग्जाम्स की तैयारी हो, कोई स्किल सीखना हो या अपने पैशन पर काम करना हो, अपनी एनर्जी, अपना फोकस और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखिए, अपने गोल्स पर काम करिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने हर एक पल का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत करते हैं।
0: और अब बारी है हमारे कल के प्रश्न की। तो दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा वायर यूज होता है? और इसका सही जवाब है नाइक्रोम।
1: और इसी कड़ी में हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? आप इसका सही जवाब हमें भेज सकते हैं हमारे नंबर पर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250। अगर आप चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी आईडी है yuvvaniald@gmail.com।
0: तो ज्योति, घड़ी भी कह रही है कि अभी थोड़ा सा समय हमारे पास बाकी है, तो क्यों ना चलते चलते अपने दोस्तों को एक गाना सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल।

0: तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल
1: और मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवजन अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी

0: चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो घड़ी में 6:05 हुए हैं। ये समय है आपको जानकारी देने का आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। तो पहले आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, 10 बजे आपको सुनवाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे सतीश शुक्ल से नीति वचन और बाबूलाल दिवाकर के स्वर में लोकगीत किस्सा गोई ये कार्यक्रम होगा 7:00।

इस मिनट पर। इस कार्यक्रम में नेहा गुप्ता और वंदना राठौर बात करेंगी कहानीकार यशपाल के बारे में और इसका पुनर्प्रसारण होगा कल सुबह 11:30 पर। 8:15 पर आप आनंद ले सकते हैं चित्रपट संगीत का और सबरस कार्यक्रम होगा 8:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

और अब कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर एक नजर। कल सुबह 7:30 पर सुनिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 की दैनिक रिपोर्ट। रात 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित होगी। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे रात 10 बजे और चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा 9:30 पर। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना होगा सुबह 6:05 पर। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे अविनाश यादव से बातचीत, भूमि सुधार का वैज्ञानिक तरीका। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा 6:50 पर। कल सुनिएगा डॉक्टर अंबुज त्रिपाठी की वार्ता, बच्चों में डायरिया, कारण, लक्षण और उपचार। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ आप सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे। कल सुनिएगा इसका 15वां भाग। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:45 पर और दिन में 12:15 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। नमस्कार, प्रयागराज से जुड़िएगा सुबह 8:45 पर और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे शेयर कीजिए फेसबुक पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर उमा बैनर्जी के स्वर में भजन सुनवाएंगे। 10:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा। कल के कलाकार होंगे विकास चंद्र पांडे, सूर्य प्रकाश पटेल और साथी, और चंद्र प्रकाश पाठक और साथी। आपकी फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत आप तक पहुंचेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ दिन में 12:30 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम हेलो पनघट दिन में 1:15 पर लेकर आएगा एक भेंटवार्ता डॉक्टर अमिता यादव से, जिसका विषय होगा महिलाओं के अंडाशय में गांठ और उनसे जुड़े अन्य रोग। युववाणी युवाओं का ये कार्यक्रम 5:15 पर होगा। कल आप सुनेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पर केंद्रित प्रेरणा पुंज और कविता पाठ। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम होगा। ग्रामीण भाई सुनेंगे किसान चर्चा, प्रतिभागी होंगे इंद्रजीत पटेल और फूलचंद्र, साथ ही आपको सुनाएंगे इंद्रजीत यादव और साथियों के स्वर में लोकगीत। हिंदी कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर। कल इसके अंतर्गत काव्य कॉमेडी में कवि होंगे विवेक सत्यांशु और अभिषेक वर्मा। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर और सब्र सुनिएगा रात 8:30 पर। ये थी जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है खोई हुई व्यक्तियों के संबंध में सूचना। श्री मुकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय इंद्रजीत झा, जो नैनी प्रयागराज के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी कोमल झा 7 जनवरी 2026 को लेबर कॉलोनी सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज नैनी प्रयागराज के पास से खो गई हैं। इनकी आयु 26 वर्ष है। शरीर की बनावट इकहरा

बदन है, चेहरा गोल है, आंखें काली हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 2 इंच है, रंग गोरा है। इनकी विशिष्ट पहचान है मस्तक पर बाल के नीचे काले तिल का निशान। बाल काले हैं, चेहरा गोरा और माथे पर पास में निशान है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 7521827760। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7521827760। शिव पूजन प्रजापति जो बिबियाकरण थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी संगीता प्रजापति 2 अप्रैल 2026 को ग्राम बिबियाकरणपुर से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, एक गहरा बदन, चेहरा गोल, आंखें काली हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है, रंग सांवला है। इनके नाक पर तिल का निशान है, बाल काले हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया बिबियाकरणपुर थाना कंधई प्रतापगढ़ में सूचित करें। अगली सूचना के अनुसार श्री कौशल कुमार पाल पुत्र रामधनी पाल जो ग्राम लोवा गड़रियान थाना हथीगवां जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि अर्चना देवी जो उनकी पत्नी हैं 28 फरवरी 2026 को दिन में 12 बजे से बहत ग्राम लोवा गड़ियान हथीगवां जनपद प्रतापगढ़ से खो गई हैं। इनकी उम्र करीब 23 वर्ष है, एक गहरा बदन, चेहरा गोल, आंखें सामान्य हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 1 इंच है, रंग सांवला है और बाल काले हैं। इन्होंने चिली कलर की साड़ी पहन रखी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें। फ़ोन नंबर है 8971520442। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 8971520442। कोई भी व्यक्ति के संबंध में सूचना की कड़ी में अगली सूचना प्रमोद की तरफ से आई है। पुत्र चंगू सरोज जो बड़ी चकिया थाना कुंडा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी सुमन 5 जून 2026 को बड़ी चकिया मौली से गुमशुदा हैं। इनके रंग सांवला है, चेहरा गोल है, आंखें औसत हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 5 फीट है, रंग सांवला है। इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया इस फ़ोन नंबर पर सूचित करें 8604108626। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 8604108626। कोई भी व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और अब आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशभक्ति रचना।

0: शिक्षा इंसान में आत्मबल और आत्मविश्वास जगाती है। स्वयं साक्षर बनिए और दूसरों को भी साक्षर बनाइए। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभायां परीक्षा कदाचार निवारणार्थं त्वरित न्याय सुनिश्चेतुं च सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकः पारितं गतः। राज्यसभायां वंदे मातरम राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवत् समानं वैधानिक संरक्षणं प्रदातुं संशोधन विधेयकः पारितं गतः। गृहमंत्री अमित शाहः असमे जलाप्लावनस्य समीक्षाम् अकरोत्। संकटावधौ केन्द्रेण

0: पंचो पंचो राम राम ओंकार रानू भैया।
1: हाँ हो सुमेर भैया
0: भाई, एक बात पंचशी कहे की बैठे।
1: हाँ हाँ
0: कि मौसम का ताव तरक, कभो कुछ गर्मी ज्यादा होत बा, कभो बारिश होत बाटे।
1: हाँ हाँ
0: तो भाई ये जो दुर्दशा महीना रहा था ना,
1: हाँ
0: एमा एक तो भाई फसल के भी जरूरी बाटे, साथ ही साथ मनई का या गोरु जानवर हों
1: हाँ हाँ
0: उनके बारे भी देखभाल के बारे भी जरूरी बाटे, समझत है
1: एकदम
0: ना।
1: हाँ भैया
0: थोड़ का लापरवाही भय, थोड़ का चूक भय, तो कमो कमो दिक्कत हो जात है। और
1: हाँ
0: ख़ास तौर पर जो दिक्कत का बात बाटे यह है कि अगर बहुत तेज़ घाम लगा
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: बारिश में भीग गया तो कमो कमो मनई का सर्दी जुकाम हो जाता है या पेट खराब हो जाता है
1: हाँ हाँ हाँ
0: या दिगदरिया हो जात है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: यह कहानी भाई पशुअन के साथे भी लागू होता है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: ख़ास तौर पर जो बारिश का पानी होता है भाई, ये कहाँ से आवत बा, कैसे आवत बाटे, का कुछ साथे कचरा और कृमि लेहे बाटे,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो ई अगर सीधे पशु पियत हैं या खाद पियत हैं तो
1: हाँ
0: नुकसान कई जात है।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है सुमेर भैया, देखे ये बात का बहुत ध्यान रखे के चाहिए कि हमसे बरसात में पशुअन के पानी के साथे साथे भैया आदमी जो उन किसान भैया बहनी हरे हैं उन्हें अपनों पानी का भी ध्यान रखे के चाहिए। अब जानवर के पानी के जो आप बात करते हैं किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि भाई उन्हें ताज़ा पानी पियावें, नले से पानी का फिर
0: साफ
1: निकाल के
0: पानी
1: पानी
0: रहे,
1: दें।
0: ताजा रहे
1: हाँ
0: भाई। हाँ
1: और वो पानी से ये है कि भैया उनकर कम से तबीयत पानी न खराब होए।
0: बिल्कुल। दूसर बात यह है भैया
1: हाँ हाँ
0: कि देखा जोन चाहे नले का पानी हो,
1: हाँ हाँ
0: चाहे हैंडपम्प का पानी हो, चाहे
1: हाँ
0: कुआं का हो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: वो तो का कि कबो कबो नलो भाई कतहुन कतहुन से टूटा रहा था
1: हाँ
0: या
1: हाँ हाँ
0: पानी बहत रहा था,
1: हाँ हाँ
0: तो आसपास के जोन कीचड़ बाटे, गंदगी बाटे ना, वो नले में आई जात है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो अगर ऐसा कोनो संभावना दिखत हो तो भाई ओके एक तो सवाची लें, ओका
1: हाँ
0: बनवाई लें।
1: हाँ
0: दूसर बात यह है कि अगर हैंडपम्प को पानी लेता है तो बारिश में कबों को होत का कि मुजबिल्ला खुल जाता है,
1: हाँ हाँ
0: तो वह पानी बाहरे का पानी स्रोत में चला जाता है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उप ये खाए में नुकसान कर रहा था। कुआं का भी यह स्थिति रहा था, कुआं
1: हाँ
0: ज़्यादा तो सब खुला रहा था, उनमें बारिश का पानी जाता साथ ही गंदगी जाता।
1: हाँ हाँ
0: तो अगर कुछ ऐसा स्थिति हो तो एक तो का देखे सवाचे,
1: हाँ हाँ
0: दूसर
1: हाँ
0: बात यह है कि भाई अगर तबो दिक्कत बाटे तब
1: हाँ
0: तो पानी निकाल के ओका समछियाई के पहले तो खूब अच्छे से उबाल लें,
1: हाँ हाँ
0: उबाल
1: हाँ
0: के ठंडा करके भाई छान के तब पिए खाए में इस्तेमाल करें।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा एक बात और है, किसान भैया बहनी हरन के चाहे कि भैया जो पशु प्राणी हैं उनके जो चारा है भैया उहू को बहुत अच्छी तरीके से साफ करके ही उन्हें खियावें।
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा था ना, कहूँ कहूँ बहुत काम ना, देखा किरवा उरवा हम आई जाते हैं
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो अगर पशु के पेटे में गए तो नुकसान कई जाता है।
1: हाँ हाँ
0: रनु भैया एक बात ही पंचन से कहा कहा कि देखा है जो मौसम है बस काला वाला,
1: हाँ हाँ हाँ
0: बारिश है, ठंडा का है, घाम है, तो ऐसन में अगर आसपास में गंदगी बाटे तो मसा माछी पैदा होत हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: काटत हैं, नुकसान करत है।
1: हाँ भैया
0: और दूसर बात यह है भाई कभों कभों देखा जहरीला कीड़ा भी हुआ नजर आवत हैं,
1: हाँ
0: तो ये देखे रहा है कि भाई अगर पशु जात हैं या आदमी खुदाऊ जात बाटे
1: हाँ हाँ
0: तो ये देखे रहा है कि भाई कोनो ऐसा जहरीला कीड़ा हो तो दूर रहें।
1: हाँ
0: दूसर
1: हाँ
0: बात यह है कि भाई गंदगी आसपास झाड़ झंखाड़ हो ही न दें,
1: एकदम सही
0: बारिश में
1: कहन।
0: बहुत हो जात है तो
1: हाँ
0: ओका हटावत जाए।
1: अच्छा एक बात और है भैया जो आप बात कहते हैं ऐसे ही है कि भैया जिसे जानवर जहाँ बांधा जाते हैं तो किसान भैया बहनी हरिन के एकद ध्यान रखे के चाहे कि भैया वहाँ बहुत ज़्यादा किच्चा न हो तनी झूर जगह बांधें और ईटा पाथर रहे समथर रहे
0: धोए
1: जौन से
0: पोछे रहें भाई,
1: हाँ
0: साफ सफाई रहे
1: हाँ
0: से।
1: जौन से उनके जानवर के भी नुकसान न हो और साथ ही साथ जौन आजकल भैया मच्छर रहें और मक्खी हैं उसे ये है कि भैया जिसे जानवर के काट लेते हैं तो उनका नुकसान करते हैं और सबसे ज़्यादा भैया थने में काट लेते हैं
0: ये
1: तो।
0: देखा अनमनस कर रहा था जब पशु ना
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ना तो
1: हाँ
0: अच्छे से खाए न बैठे न जुगाली करें,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ऐसा का होता कि अगर लगे ना है तो दूधो कम हो जाता उनको, कहो कहो बीमारी हो जाता है।
1: हाँ हाँ
0: और भाई हम कहते देखा जे पंचहरे पशुअन में गला घोटू बाटे या तरह तरह के बीमारी हैं,
1: हाँ मुंह
0: इनका
1: पका खुर
0: टीका,
1: पका
0: हाँ इनका टीकाकरण कराए हैं तो अच्छी बात है,
1: हाँ हाँ
0: और अगर ना करे हैं तो डॉक्टर भैया से मिल के करा लें, समझता है ना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: कहे कि देखा थोड़ बहुत लापरवाही में कहूँ कहूँ बड़ा नुकसान हो जाता,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो थनैला रोग बाटे या तरीके के तमाम रोग हैं
1: हाँ हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ
0: बारिश में होने की संभावना बहुत रहा था, तो एका पंचहरे देख लें। एक बात यह कहा कहा कि देखा भाई ये तो वहाँ जोन पशु प्राणी हमरे तोहरे घरे दुआरे या आसपास नजर के सामने आए,
1: हाँ हाँ हाँ
0: इनका तो देखभाल हो जाता भाई
1: एकदम
0: साथ।

0: चार तमाम ऐसन पशु वहाँ हैं
1: हाँ
0: जो उनकी जंगली यहाँ है, जंगल में रहा था, जंगल उनका शोभा दे था, जंगल उनका कार्य क्षेत्र बाटे। जैसे कि देखा भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ
1: बाघ
0: दिवस,
1: दिवस है
0: और
1: एकदम।
0: बाघ भाई भारत का पहचान बाटे, शान बाटे, समझता है ना। जगह कहा जाता कि टाइगर कहा जाता अंग्रेजी में, है बंगाल टाइगर या तरीके के तमाम नाम हैं। तो कहा का मतलब यह है भाई कि प्रकृति में जितना भी जीव वहाँ हैं, जंतु वहाँ हैं, इनका सबका उपयोगिता बाटे, और ये सब प्रकृति का संतुलन स्थापित करते हैं।
1: एकदम सही कह भैया। अच्छा आज 29 जुलाई है, तो ई दिन जो है मुख्य रूप से भैया एक जो मुख्य उद्देश्य है देश और दुनिया में भैया कम से जो बाघ का संख्या घटत है ओकरे प्रति आम जनमानस के जागरूक करे के हैं, और साथ ही साथ भैया उनके जो प्राकृतिक आवास है
0: हाँ
1: भैया ओके साथ ओके भी बचावे के है, ओकरे साथ छेड़खानी ना करे के है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया देखे सरकार के जो एक शुरुआत की है सो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट भे, और इसी दिन से ये निर्धारित भे कि 29 जुलाई के
0: मनावा जाए भाई,
1: हाँ विश्व
0: या
1: बाघ
0: बहाने
1: दिवस।
0: याद की जाए कि उनका कितनी संख्या बाटे,
1: हाँ
0: का
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: उनका जरूरत है, कैसे उनका रखा जाए।
1: हाँ अच्छा
0: हाँ
1: एक बात और रहे कि भैया अपने भारत सरकार जो रहे वो भैया ये लक्ष्य रखे रही कि 2022 तक जौन रहे उनकर संख्या बढ़ाई के दुगना करे के है, और अब तो आप जान लें कि कम से कम भारत में जो बाघन के संख्या हो लगभग 5,000 के ऊपर हो गया हो।
0: बहुत बढ़िया भैया,
1: हाँ
0: और बढ़ाई। और
1: हाँ
0: हम कहते देखा भाई, प्रकृति में संतुलन के बड़े
1: हाँ हाँ
0: सब जीव का उपयोगिता बाटे, और सब जीव का भाई जिये का विचरण करे का उनका हक बाटे,
1: हाँ
0: एक मने इनके जाने के पड़े।
1: हाँ
0: और हम कहा देखा भाई, हक का बात होता तो यो बात होता ना कि भाई देखा, खेती के बात हो, देश समाज के बात हो, या लोकतंत्र का बात हो, या व्यवस्था का बात हो, तो सबका हक बाटे। हक के साथे साथे भाई कर्तव्य भी बाटे। तो कर्तव्य और हक यानी अधिकार के जब दोनों का सामंजस्य अच्छा रहा था ना, तब समाज देश का प्रगति होता, विकास होता।
1: हाँ भैया देखे
0: तो
1: एक बात और है, देखे पंचायती में भैया देखे ढोल मजीरा लेके बाबूलाल भैया बैठा है, हम सोचे तो ये एक विकास गीत है फूले मन में पियरवा किसान भैया बहनी हरन के सुनवाई दिया जाए।
0: सुनवा दो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ, तो भाई गौने भी सनेसो रहा है।
4: हाँ,
3: जो बात कही होत रही भैया।
4: हाँ,
3: कि देखा कोनो देश समाज नीत पे चला था।
4: हाँ,
3: नीत का अनुपालन करा था और परंपरा से करा था भाई।
4: हाँ,
3: तो वहाँ देश समाज का विकास सुनिश्चित होता।
4: हाँ, हाँ,
3: आदमी खुशहाल रहा था, समाज खुशहाल रहा था, समाज विकास करा था, देश तरक्की करा था। तो देखा नीति वचन का दिन बाटे।
4: हाँ, हाँ,
3: तो भैया सतीश शुक्ला जी नीत के बाद बताओ तो हम का पंचरे सुने।
4: हाँ,
3: भाई
4: सुनवाई दी भैया।
5: नमस्कार, आज एक ऐसा सुंदर नीति वचन आप लोगों के मध्य लेकर के आया हूं जो समाज में समरसता का संदेश देता है। कहा गया है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जहां पर इस पृथ्वी को प्रणाम करने से लेकर के नारी शक्ति की विशेष रूप से महिमा गाई जाती है। बहुत सालों से सत्संग सत्पुरुष प्रवचन की बात जो करते हैं, उन सत्संगों में तमाम प्रकार से राष्ट्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, लोक कल्याण के हित में तमाम प्रकार की बातें ऐसी होती हैं जिससे समाज को एक नई दिशा और दशा, एक नया जीवन मिलता है। जीवन में कोई बदलाव नहीं है जिन लोगों के, ऐसा प्रवचन सुनने के बाद भी जीवन में वही अभाव, दुख, वही टेंशन आदि तमाम प्रकार के प्रपंचों से घिरे हुए हैं। इसीलिए सत्संग में बैठने की जो इच्छा है वह धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो फिर इस पर हम क्या करें? सत्संग सुन रहे

हैं अगर, या फिर हम किसी प्रवचन को सुन रहे हैं, या देश हित में राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके श्रवण में, आपके कार्य करने की शैली में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो सकती है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति का जब वर्णन आता है तो उसमें लिखा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। आप सत्संग सुनते किनसे हैं, सत्संग किस वाणी से आप सुन रहे हैं, उस वाणी को प्रसारित करने वाला व्यक्ति क्या है, उसका व्यक्तित्व तो कैसा है, उसको सुनने से आपके अंतर में, मन में, अंतर हृदय में बैठा हुआ वह जो नारायण है, जो ईश्वर है, जो आत्मा आपकी मलिन हो चुकी है वह स्वच्छ कैसे होगी, इन सभी चीजों पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए। भगवान ये कहते हैं, भगवान का अर्थ सिर्फ प्रेम है, भगवान से अगर आप जुड़े हुए हैं, इस चराचर जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो यह प्रकृति भी 4 बार अपना रंग बदलती है, और उस रंग में जब बसंत आता है तो जैसे मनुष्य अपने अंदर तमाम प्रकार के एक नए विचारों का बसंत लाता है, ऐसे ही प्रकृति में सुंदर बसंत आता है। इसलिए प्रेम विहीन सुखी आदि आप अपने जीवन में तभी रह पाएंगे, प्रेम विहीन व्यक्ति जो है अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रेम करना है तो माँ से करिए, प्रेम करना है तो पिता से करिए, प्रेम करना है तो राष्ट्र से करिए, परिवार से करिए, आनंदित हो करके सुखी रहने का प्रयास करिए, ज्ञान को एकत्रित करके अपने राष्ट्र को, अपने समाज को एक ऐसी दिशा में लेकर के जाइए जहाँ से आपको एक सुंदर से सुंदर मंगल पांडे, वीर सावरकर आदि ऐसे महान पुरुषों के, जिनके योगदान इस राष्ट्र के हित में कहीं न कहीं अतुलनीय है, जिसका आज भी लोग अनुसरण करते हैं। वैसे प्रवचन तो हम सब सुनते रहते हैं, कई ग्रंथों में पाठ भी आता रहता है, लेकिन जहाँ पर पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी की बात आती है, माँ काली के प्रति उनका प्रेम बहुत ही अनन्य था, लेकिन माँ शारदा के साथ उनकी जो अद्भुत पावन एक स्थिति थी वह लोग भूल जाते हैं। क्या कोई कभी उसके ऊपर प्रवचन करते हुए देखा है, आपने सुना है, जो रामकृष्ण परमहंस का जो त्याग था वह समाज में एक ऐसी दिशा में एक ऐसा छाप छोड़ गया जो यकीनन आज के युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा दे सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की अपने गुरु भाई बहन के प्रति जो अद्भुत महाप्रेम था उसको भी हम नजरअंदाज कर दिए। स्वामी विवेकानंद से आप केवल एक शिक्षा लेते हैं कि उन्होंने 0 से लेकर के और एक ऐसी विदेशों में जा करके नीतियों की अलख जगाई जो राष्ट्र के हित में थी, जो धर्म के हित में थी, जो कहीं न कहीं प्रत्येक ऐसे युवाओं को प्रेरित करने वाली थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद के परिवार के भी संबंध में अगर आप सोचेंगे तो आपको यकीनन बहुत ही आश्चर्य होगा कि वह अपने गुरु, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माँ, अपने पिता आदि सबके प्रति भी उतना ही आदर सम्मान उन्होंने किया। इन सब के प्रेम को लेकर के चलने के साथ साथ तब उन्होंने राष्ट्र के प्रति स्वयं को समर्पित किया। अब ऐसे में आपको बताते चलें कि सुंदर प्रवचन जब हो रहे हों तो युवाओं को जागृत करने के लिए, बहनों को जागृत करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ना चाहिए, अहिल्या के बारे में पढ़ना चाहिए आदि आदि। ऐसी पंच कन्याएं हैं जिनके बारे में जब आप श्रवण करेंगे, वक्ताओं द्वारा वह समाज में सुनाया जाएगा, तो यकीनन मानिए उन बच्चियों के अंदर, उन बहनों के अंदर, उन माताओं के अंदर एक ऐसी प्रतिभा जगेगी कि उनसे आने वाला प्रत्येक बालक इस युग में ध्रुव और प्रह्लाद बन करके निखरेगा। लेकिन पुरुष जो है अपना पुरुषार्थ स्थापित नहीं कर पाता, पुरुष अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है, तमाम प्रकार के प्रपंचों से वह ग्रसित रहता है। इसीलिए जीवन में कहा गया है कि जब जब आप गृह कारज नाना जंजाला, इस परिस्थिति में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा भटकाव में ला रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, आप संतों की शरण में जाइए। आज की यह पवित्र नवरात्रि, आज इस पवित्र नवरात्रि का सुंदर पर्व, यह समाज में देवी देवताओं की आस्था को लेकर के जब हम समाज में पूजन करते हैं, 12 वर्ष की कन्या का चरण धो करके उसका पान करते हैं, तो आप यकीनन मानिए समाज में स्त्री की सुरक्षा, नारी सम्मान, वही पूर्व परिस्थितियां जो सतयुग में थी, जो त्रेता में थी, जो द्वापर में थी, वही आज भी संभव है। लेकिन मनुष्य की

मनुष्यता इतनी भंग हो चुकी है कि वह अनेक प्रकार के विषादों से, अवसादों से, तमाम प्रकार के ऐसे कुकृत्यों से वो घटित हो रहा है। क्षण प्रतिक्षण मनुष्य मर रहा है, और इस परिस्थिति को रोकने के लिए ही यह नीति वचन प्रसारित किया जाता है। यह नीति वचन हमारे जीवन में एक ऐसा आपको जगाने का कार्य करता है कि दिन प्रतिदिन आप जब जब तमाम प्रकार के अवसादों से, क्लेशों से, तमाम प्रकार के विवादों से जब जब आप ग्रसित हों, तब आप धर्म का चयन करें। और धर्म का जब जब आप चयन करेंगे, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि धर्म के पथ पर चलने के लिए एक गुरु रूपी कहीं ना कहीं आपको एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, एक ऐसा केंद्र दिखाई पड़ता है जिस गुरु के सुंदर से वचनों को, नीति वचनों को आप अपने जीवन में उतार करके अपने मार्ग, अपने सतमार्ग की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन आज वही संसार में रह रहा मनुष्य जब गर्भ में माताओं की कन्या आती है, तो उस कन्या को एक भ्रूण हत्या की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। लक्ष्य

सुंदर से वचनों को, नीति वचनों को आप अपने जीवन में उतार करके अपने मार्ग, अपने सतमार्ग की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन आज वही संसार में रह रहा मनुष्य जब गर्भ में माताओं की कन्या आती है तो उस कन्या को एक भ्रूण हत्या की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। लक्ष्मी की प्राप्ति सबको चाहिए, लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है। स्त्री में माँ सबको चाहिए लेकिन माँ का सम्मान नहीं करना है। पत्नी भी सबको चाहिए लेकिन पत्नी का सम्मान नहीं करना है। तो आदि आदि कहा गया है शास्त्रों में, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर आप कृष्ण के उपासक हैं, आप यदुनाथ के उपासक हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब द्रौपदी की लाज रखने वाले यह साक्षात कृष्ण योगेश्वर जाकर के एक स्त्री के मर्यादा को वहां बचाने का कार्य करते हैं, तो यकीनन मानिए कि यह नीति वचन आपको यह संदेश देता है, उन युवाओं को संदेश देता है कि समाज में तमाम प्रकार के जघन्य अपराध जो फैले हुए हैं, जहां पर हमारी बहन बेटियां, जहां पर हमारी माताएं, जहां पर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें किस प्रकार से बचाया जाए, उन्हें किस प्रकार से अच्छे मार्ग पर लाया जाए, उन्हें किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए। महर्षियों से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। जीवन में महर्षियों की प्रेरणा से, ऋषियों की प्रेरणा से हम आगे जब बढ़ते हैं तो गर्ग, गौतम, सांडिल्य आदि ऐसे तमाम ऋषियों के नाम आते हैं। आप समझिए कि वैज्ञानिक विज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह धर्म से, आध्यात्म से निकला हुआ ज्योतिष उस पर बिल्कुल भी यकीन तब तक नहीं करता जब तक वह रिसर्च नहीं कर लेता। आप विद्वान तो बन गए, लेकिन वृक्ष की शाखा कितनी भी दूर चली जाए लेकिन वह जड़ से जुड़ी होती है, और जड़ हमारी क्या है? संस्कृति। हमारा मूल जड़ जो है वह धर्म है, और धर्म क्या है? मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जहां से संपूर्ण विश्व को, राष्ट्र को, चराचर जगत को, इस पृथ्वी पर जन्मे हुए उन लोगों की रक्षा, सुरक्षा, जीवन यापन, सृष्टि में संहार, प्रलय, सृजन आदि सब कुछ अपने हाथों में लेकर के वह चल रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है अपनी तमाम प्रकार की गतिविधियों में इन चीजों को समझ नहीं पाता कि वह आनंदित रहने के विषय में, वह राष्ट्र के बारे में सोचने के विषय में ना सोचते हुए आदि तमाम प्रकार की ऐसी विसंगति में उलझ जाता है, जहां पर उसका बनाया गया औचित्य, बनाया गया अवशेष तमाम प्रकार की गतिविधियों को संकेत देने लगता है। कभी कभी आप ध्यान देते होंगे कि जब आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो शरीर में अवसादों के साथ साथ रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। नाना प्रकार के रोग आपको विभिन्न तरीके से आपको घेरने लगते हैं। कभी शरीर साथ छोड़ने लगे तो परिस्थितियां तमाम प्रकार से पारिवारिक भी बिगड़ जाती हैं और सामाजिक रूप से भी बिगड़ जाती हैं। परिवार में रह रहे तमाम ऐसे जो लोग हैं, जो कुटुंब हैं, उनके मन में भी बहुत विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं यही आसक्ति है, जो पहली लाइन में हमने कहा कि इस जीवन को माया रहित किस प्रकार से बनाया जाए, मोह रहित किस प्रकार से बनाया जाए। माया, मोह आदि चीजों से रहित हम तब हो सकते हैं जब हम ईश्वर की इस बनाई गई सुंदर प्रकृति में चारों ऋतुओं को देखते हैं कि कभी वसंत आने पर बहुत हरा भरा रहता है, कभी उसी वृक्ष में पुष्प लग जाता है, कभी समय से वही वृक्ष आपको छाया आदि देते हुए फल भी प्रदान करता है, लेकिन उस वृक्ष के साथ एक ऐसा भी समय आता है जिस समय पतझड़ भी हो जाता है। तो इसलिए मोह माया से आसक्तियाँ जो भी आपकी जुड़ी हुई हैं वह समाज के लिए कहीं हानिकारक ना हो, इसलिए अपनी पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ यह सदैव जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जहां मां भगवती के विभिन्न रूपों को कहा गया है, बतलाया गया है, लेकिन उसमें एक ऐसा स्वरूप है, राजा हिमांचल के यहां मां मैना के गोद से, गर्भ से जब जन्म लेती हैं माता पार्वती, तो आप मानिए कि वह पार्वती कछुदिन भोजन बारी बतासा, कछुदिन कीन कठिन उपवासा। वह ब्रह्मचारिणी की उस पवित्र स्वरूप को धारण करते हुए शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वायु तक का पान किया, उन्होंने अपने शरीर को सुखा दिया, अपर्णा नाम पड़ गया। तो इससे जीवन में यह संदेश मिलता है कि जब जब आप भगवती के पूजन की तरफ आगे बढ़ें तो नारी शक्ति के प्रति आप नारी को बहुत सामान्य समझ लेते हैं, नारी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, लेकिन यकीनन मानिए यह सृष्टि नारी से ही है। एक पुरुष का जन्म एक नारी से ही उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे में
पुरुष जो आया है उसे इस बात का सदैव जो है ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि एक माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद जीवन में आई हुई कोई

0: कोई भी स्त्री हो, कोई भी कन्या हो या कोई भी महिला हो, आप उसका सदैव सम्मान करें। नवरात्रि यह माँ भगवती के पवित्र स्वरूपों का यह आपको संदेश देती है कि जब जब आप सत्य और धर्म के रास्ते का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाएगा। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति सदैव विजयी होता है। कर्म ही धर्म है, जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। लेकिन जीवन में जब जब आपको चुनौतियां आए, जब जब आपके सामने परिस्थितियां विपरीत हों, तो आप मानिए इस चीज को कि धैर्य आपको धारण करना होगा। और जब आपके अंदर धैर्य आएगा तो आपके अंदर विश्वास भी जगेगा। कहा गया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। साक्षात शिव और शक्ति जो है श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक कही गई हैं। मित्रों, दया धर्म का मूल है। हर किसी के प्रति दया, हर जीव के प्रति दया, प्रकृति के प्रति दया। प्रकृति का दोहन आजकल समाज में इतना ज्यादा हो रहा है कि समाज में वनस्पतियों के दोहन के साथ साथ तमाम प्रकार की परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। लोग रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में आप प्रकृति से प्रेम करते करते आपको यह सोचना चाहिए कि एक सुंदर से सुंदर वृक्षों को आप लगाएं। अपने आसपास के वातावरण को, अपने समाज के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखें, हरा भरा रखें। अहंकार का अंत विनाश है। अहंकार से व्यक्ति का पतन होता है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि विनम्रता और त्याग ही सच्ची शक्ति है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं उन्हें स्वीकार करके सदैव आगे बढ़ लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ऋतुएं बदलती हैं।
1: हाँ भैया रानू,
0: हाँ हाँ
1: देखा
0: भैया,
1: भैया इतर रहन सती शुक्ला भैया
0: हाँ हाँ
1: कितना
0: हाँ
1: अर्थाय समझाए के बताएं कि देश का बा समाज का बाटे, नारी पुरुष का कुछ सामंजस्य बाटे, देवी
0: हाँ
1: देवता का स्वरूप में का कुछ वर्णन बाटे, का कुछ भाई महात्म बाटे,
0: हाँ
1: तो एका
0: हाँ
1: समाज से जुड़ के आदमी कैसे देख सकत आगे बढ़ सकत है। देखा भाई अपने यहाँ ज्ञान का बहुत बड़ी और बहुत पुरानी थाती और परिपाटी रही बाटे। आज देखा गुरु पूर्णिमा का दिन बाटे, तो कुल
0: एकदम
1: पंचन के भाई बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा के बरे। गुरु का भूमिका हर समय रहत भैया जीवन में,
0: हाँ हाँ
1: समझता
0: हाँ
1: है ना। जब आदमी जन्म लेत है तो माँ और पिता गुरु के रूप में रहत हैं,
0: हाँ
1: सब कुछ सिखावत बतावत रहत हैं, समझता
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ हाँ हाँ
1: ओकरे बाद विद्यालय में जात है, जीवन समाज में जैसे जैसे बढ़त जात है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: उनका गुरु के रूप में तमाम लोग मिलत रहते हैं, जैसे सब कुछ सीख मिलत है। वो
0: एकदम
1: चाहे
0: भैया,
1: पशु हो चाहे प्रकृति हो, सब जगह से सीख मिलत है।
0: हाँ हाँ
1: और जहाँ से भैया सीख मिले और सीख ऐसा मिले कि जोन की व्यक्ति का
0: जीवन में,
1: विकास करे, जीवन का विकास करे, जीवंतता का विकास करे, समाज का विकास करे, वो सब
0: हाँ
1: गुरु
0: हाँ
1: रूप में होता।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो गुरु का गुरुता का भाई वर्णन ना किन जाए सक, समझता है ना।
0: हाँ
1: कहा गवा गुरु
0: गुरु
1: गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, और
0: बलिहारी
1: बलिहारी
0: गुरु
1: गुरु
0: आपने,
1: आपने गोविंदो दियो बताए।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: कतहुन कतहुन का भगवान से ऊपर माना गवा, दर्जा दीन के बाटे,
0: हाँ हाँ हाँ
1: इनकर अपन महात्म देखत भाई।
0: हाँ
1: दूसर बात यह है भाई कि जोन वेद व्यास ऋषि जी रहन है,
0: हाँ हाँ
1: जे
0: हाँ
1: महाभारत की रचना कह रहे हैं,
0: हाँ हाँ
1: मूल रूप में उनकर पूजा कीन जात आज, समझता है
0: अच्छा,
1: ना।
0: हाँ हाँ हाँ
1: उनका गुरु माना जात है, आदि गुरु भगवान शिव को माना जात है, और वंदे कृष्णम जगत गुरु के जगत के गुरु यही हैं भगवान कृष्ण। गीता को उपदेश दें तो गुरु रूप में उपदेश दें, जो उनकी आज भी प्रासंगिक बाटे,
0: हाँ
1: समझता
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ
1: तो कहे मतलब यह है भाई कि गुरु का वंदन करे के चाहिए, गुरु को अभिनंदन करे के चाहिए, गुरु को स्मरण करे के चाहिए, और उनके दिखाए बताए समझाए राह पर चले चाहिए। यही से मानवता का, समाज का और खुद का भी विकास हो
0: हो
1: सकता
0: के
1: था।
0: चाहे,
1: अब भाई एक बात कही और बात है कि
0: हाँ
1: देखा
0: बातचीत है भैया धान की फसल की देखभाल। अच्छा देखे ये समय किसान भैया बहनी हरे भैया धान लगावत हैं, कुछ लगाई चुका हैं। तो ऐसे आज भैया डॉक्टर विपिन कुमार से सुरेश यादव भैया का बातचीत है, हम सोचे थे किसान भैया बहनी हरन को सुनवाई दिया जाए।
1: सुनवाई दी।
2: खरीफ की फसल में धान की फसल का बड़ा महत्व बा। आज अपन किसान भैया बहनी हरिन धान के रोपाई में साथे साथ नर्सरी की तैयारी में लाग बा। तो आज अपने कार्यक्रम के बीच में डॉक्टर विपिन कुमार भैया हैं जौन खेती किसानी के विशेषज्ञ हैं। भैया अपने कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, और हम आपसे पहले ये जानना चाहते थे

0: धान की फसल की देखभाल बदे कौन कौन बातन का ध्यान रखें, साथे साथ जो नर्सरी भी जो किसान भैया बहनी है इनके लिए बा, तो उनका विशेष कौन कौन बातन का ध्यान रखें इस बारे में बताऊं।
1: देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। और जहां तक धान की फसल की बात है
0: जी,
1: इस समय बहुत सारे किसान भाई हमारे धान की फसल की रोपाई कर चुके हैं
0: जी,
1: कुछ रोपाई करने की तैयारी में है।
0: हाँ।
1: मौसम इस समय अनुकूल है, बारिश अच्छी चल रही है, तो किसान भाई जैसे कि रोपाई की जहाँ तक बात है, जो नर्सरी 30 से 40 दिन पुरानी हो चुकी है पौध, उसको लगाने का इस समय उपयुक्त समय है।
0: हाँ।
1: जो अभी 7 से 10 दिन 15 दिन इंतजार करके लगाना चाह रहे हैं
0: जी,
1: वो थोड़ा सा नर्सरी पे पौध पे ध्यान रखेंगे कि उसमें किसी तरह की रोग की कोई समस्या तो नहीं है।
0: हाँ
1: या कभी कभी ये देखने में आता है कि पौध पीली पड़ जाती है,
0: जी,
1: तो उस तरह की समस्या अगर किसान भाई देखते हैं तो उसका समयानुसार, जैसे पीलेपन के लिए अगर चाहें तो वो कोई एक फफूंदी नाशक जिसमें कार्बेंडाजिम है,
0: हाँ
1: और अगर चाहें तो किसान भाई जानते होंगे एक जैव फफूंदी नाशक भी आता है
0: जी,
1: जिसको कि ट्राइकोडर्मा के नाम से जानते हैं। तो
0: अच्छा
1: कार्बेंडाजिम और ट्राइकोडर्मा, किसान भाई इसको 4 से 5 ग्राम प्रति केजी के ग्राम के हिसाब से मिला के अगर
0: जी,
1: इसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से जो पौध है उसको
0: हाँ
1: इस तरह की समस्या से निजात मिलेगी।
0: अच्छा। और साथ ही साथ भैया, जैसे कि इटेम अपन रुपाई भी बहुत किसान भैया बहनी कह रहे हैं, तो रुपाई करे बदे उस समय कौन कौन बातन का ध्यान रखें?
1: देखिए, रोपाई का जो उपयुक्त तो समय है वो तो जून के तीसरे सप्ताह से लेके,
0: जी
1: और ये कहा जाता है कि मध्य जुलाई तक कर लें। लेकिन अगर नहीं किसान भाई कर पाए हैं तो अभी 10 से 15 दिन का समय है
0: जी
1: जिसमें कि वो रोपाई को आवश्यक रूप से कर लें, क्योंकि
0: अच्छा,
1: कहा यह जाता है कि जितना देर होगी उसके बाद तो फसल की उस
0: पैदावार
1: पैदावार
0: में
1: पे,
0: कमी
1: हाँ,
0: आएगी। हाँ
1: निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। तो
0: जी
1: रोपाई का जो सही समय है, जो पहले अगेती जो फसलें हैं जो
0: हाँ
1: कम समय में पकने वाली हैं, वो 30 से 35 दिन रोपाई का समय रहता है,
0: जी
1: 30 से 35 दिन की पौध। और जो मध्यम वाली हैं उनमें 40 से 45 दिन, और जो लंबी अवधि वाली हैं उसके लिए 50 से 55 दिनों में इसकी रोपाई की जा सकती है।
0: जी
1: एक बात और इसमें ध्यान देने की है कि किसान भाई जब रोपाई करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि पौध की जो रोपाई करते हैं उसकी गहराई
0: जी जी
1: 3 से 4 सेंटीमीटर,
0: हाँ
1: अंगूठे से थोड़ा सा नाप देख लेते हैं, वो तो अनुभवी लोग जो हैं वो जानते हैं कि 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसका वो नहीं होना चाहिए गहराई।
0: जी
1: दूसरा, जो रोपाई करते हैं उसमें जो पौध लगाएंगे वो पौधों की संख्या भी 2 या 3 रखेंगे। देखने में आता है कभी कभी बीच बीच में रिक्त स्थान हो जाता है, पौध मर जाती है, तो
0: जी
1: इसलिए किसान भाई वहाँ पर 2 से 3 पौधे अगर लगाएंगे, 3 पौधे लगाएंगे तो निश्चित रूप से रोपाई अच्छी होगी।
0: अच्छा। साथ ही साथ जैसे कि किसान भैया बहनी जो ने फसल में रुपाई कर ली बा, तो समय समय पर उर्वरक की भी जरूरत पड़त बा, तो ऐसे दशा में किसान भैया बहनी कौन कितने मात्रा का प्रयोग करें, ताकि और कब करें, कितने दिन में उर्वरक के प्रयोग करें, ताकि फसल पर कोनो तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े?
1: जहाँ तक देखिए उर्वरक की बात है
0: जी
1: तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तो
0: अच्छा
1: अति आवश्यक हैं ही।
0: जी
1: और अगर इनकी मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन लगभग 120 किलोग्राम,
0: जी
1: फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश भी 60 किलोग्राम प्रति
0: अच्छा
1: हेक्टेयर की दर से इसकी आवश्यकता पड़ती है।
0: जी
1: खेत की तैयारी के समय ही किसान भाई सभी जानते हैं कि फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा
0: जी
1: ये खेत की तैयारी के समय ही मिला दिया जाता है। और जिन किसान भाइयों के यहाँ पे अगर जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे जिंक कमी है, तो
0: जी
1: वहाँ पे वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसी समय उसमें खेत में जिप्सम को भी यहाँ मिला लेंगे। बाकी रही आधी नाइट्रोजन की बात, तो उस आधे को भी ये 2 भाग में विभाजित कर लेंगे। जो 60 किलो बची हुई है उसका 30 किलो ये करेंगे रोपाई से करीब 30 दिन बाद,
0: जी
1: और जो बाकी का बचा हुआ है उसको आप कल्ले निकलते समय कर देंगे तो फसल निश्चित रूप से आपकी पैदावार आपको अच्छी मिलेगी।
0: जी साथ ही साथ बहुत से किसान भैया हरिन जो उन्हें तरह तरह के जो उन्हें उर्वरक के प्रयोग में हरी खाद है, साथ ही साथ और भी कीटनाशी दवाइयों का भी प्रयोग

0: करत हैं। तो हम आपसे एक बात और ही जानना चाहे थे कि खरपतवार से संबंधित की तरह तरह खरपतवार उगावत हैं, किसान भैया बहनिहर इनका निरावे गुड़ावे में जो उन्हें बहुत तकलीफ होते, ज़्यादा खर्च बढ़त है, तो ऐसे दशा में हमार किसान भैयान बदे खरपतवार के रोकथाम बदे कौन उपचार बताऊँ मैं?
1: देखिए, उर्वरक में ही जहाँ आपने अभी कहा कि हरी खाद और कुछ नई जो चीज़ें हैं
0: जी
1: उसमें आपको मैं दो नाम ज़रूर बताना चाहूँगा। एक एजेटो वेक्टर।
0: जी
1: एजेटो वेक्टर की लगभग आधा किलो मात्रा
0: हाँ
1: 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर किसान भाई मिलाएंगे जमीन में, तो
0: जी
1: निश्चित रूप से नाइट्रोजन की जो कमी है वो, एक तो उनको कम आवश्यकता में 15 से 20 किलो नाइट्रोजन की बचत होगी,
0: जी
1: और जो फसल की जो पैदावार होगी वो भी अच्छी होगी। इसी
0: अच्छा
1: क्रम में एक PSB जीवाणु भी बोलते हैं जिसको,
0: जी
1: तो PSB जीवाणु की भी अगर हम इसमें उपयोग करते हैं धान की फसल में, तो निश्चित रूप से फसल अच्छी होती है।
0: अच्छा
1: अच्छा, रही बात खरपतवार नाशी की, जैसा कि आपने बताया
0: जी
1: कि क्योंकि फसल में देखा होगा कि पानी हर समय खड़ा रहता है, तो निराई गुड़ाई में किसान भाइयों को दिक्कत अक्सर आती है।
0: जी
1: तो इसके लिए जैसे ही रोपाई करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर में एक ब्यूटा क्लोर के नाम से
0: जी
1: खरपतवार नाशी आता है, ब्यूटा क्लोर,
0: अच्छा
1: जिसको आप 1 लीटर के प्रति एकड़ के हिसाब से
0: जी
1: अगर किसान भाई खड़े फसल में छिड़क देंगे, तो
0: हाँ
1: वो खरपतवारों को, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हैं संकरी पत्ती के हैं, तो उनको जमने नहीं देगा।
0: अच्छा
1: रही बात इसी में ब्यूटा क्लोर में ही एक नई और दवा आई है जिसका नाम है प्रेटिला क्लोर।
0: जी
1: अगर प्रेटिला क्लोर दवा का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ जो घास आपकी बच जाती हैं ब्यूटा क्लोर के प्रयोग से,
0: जी
1: तो ये दोनों तरह की घास और खरपतवारों का समूल नाश कर देगा। प्रेटिला क्लोर की लगभग 500 ml की जो दवा है,
0: जी
1: इसको आप प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में ला सकते हैं, और किसान भाई इसको खेत में सीधे पानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, डाल
0: अच्छा,
1: सकते हैं।
0: यानी कि धान के रुपाई के समय 2-3 दिन के अंतराल में यानी पानी की उपस्थिति हो चाहिए ना, यानी भरा रहे पानी।
1: पानी 3 से 4 सेंटीमीटर खड़ा रहना चाहिए, तभी आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटा
0: अच्छा,
1: क्लोर का,
0: जैसे
1: प्रेटिला।
0: कि अगर पानी ना हो तो इस दशा में किसान भैया बहनी और कोनो दवा को प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं?
1: इस तरह भी अभी जो है नए इस समय में अभी कुछ दवाइयां जो है, जिसमें एक बिसपायरीबैक सोडियम का नाम है,
0: जी
1: किसान भाई कुछ व्यापारिक नाम से दूसरे प्रचलित हैं दवाएं, लेकिन जो इसके अंदर जो रसायन है वो है बिसपायरीबैक सोडियम। इसको
0: अच्छा
1: आप 25 से 30 दिन के बाद, जब खरपतवार हल्का हल्का 2 पत्ती 3 पत्ती का रहता है,
0: जी
1: उस समय इस दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में बड़ी अच्छी तरह से उपलब्ध है।
0: हाँ
1: एक और दवा आती है जिसको के किसान भाई जानते हैं फर्टेरा के नाम से, या आप कह सकते हैं ये तो व्यापारिक नाम है, अगर किसान भाई जाएंगे तो उनको ये
0: जी
1: दवा बेंथियोकार्ब भी कह सकते हैं आप, तो
0: हाँ
1: वो बेंथियोकार्ब बाजार में प्रचलित है, आप बेंथियोकार्ब रसायन के नाम से आप ले सकते हैं इसको।
0: अच्छा, यानी आप खरपतवार रोकथाम बदे जो उन जानकारी दी किसान भैया बहनी ने लाभ उठावे, साथ ही साथ खरपतवार के जो ने तरह तरह के कीट पतंगा होते हैं, तरह तरह के ऐसे कीटनाशी जीव होते हैं जो उन पौधन का पत्तियन का खाए खाए के उनके पत्तियन का पेड़ पौधन का नष्ट करत हैं, तो जोने से किसान भैया बहनी इनके बड़ा नुकसान होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहिए डॉक्टर साहब कि कीटनाशी के बदे कोनो उपचार बा कि जोने तरीका से कि रोकथाम की जा सके?
1: बिल्कुल, धान की फसल जो है आप देख रहे हैं, मौसम भी इस समय ऐसा है कि जिसमें कीट और बीमारियां
0: जी
1: दोनों ही जो है फसल को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं,
0: हाँ हाँ
1: और इसमें सबसे जो मुख्य है आप अगर देखेंगे तो उसमें दीमक की फसल, जो
0: जी
1: कि जड़ को धीरे से काटती है और उसके बाद फसल आपकी गिर जाती है, आप देखते हैं पीली पड़ जाती है और फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है।
0: जी
1: तो किसान भाई, बाजार में क्लोरोपाइरीफास के नाम से एक दवा प्रचलित है, क्लोरोपाइरीफास दवा को आप पानी के साथ में ही, जो सिंचाई का पानी किसान भाई जो दे रहे हैं
0: जी
1: उसी के साथ में इस दवा को 1 से 1.5 लीटर के हिसाब से आप डालेंगे, तो मेरे ख्याल से दीमक की समस्या से उनको निजात मिलेगी। रही दूसरे कीड़े की बात, तो किसान भाई अभी जिन लोगों ने रोपाई कर दी है
0: जी
1: तो आप देख रहे हैं उसमें एक पत्ती लपेटक कीट होता है।
0: हाँ हाँ
1: पत्ती लपेटक कीट जो सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है, पत्ती की नोक पर बैठा रहता है और वो उसमें नाली बना लेता है पत्तियों की,
0: जी
1: तो वो धीरे धीरे पत्तियों का क्लोरोफिल जो हरा वाला भाग होता है उसको खुरचता रहता है,
0: अच्छा
1: जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह से प्रभावित होती है। किसान भाई इसके लिए लैम्डा साइलोथ्रिन नामक

0: कीटनाशक बाजार में उपलब्ध है। तो
1: जी
0: लेमडा साल्यूथ्रिन 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो पत्ती लपेटक कीट जो है किसान भाइयों को नहीं दिखाई देगा। रही बात अगले कीड़े की, तो किसान भाई जानते होंगे कि एक गोभ में गिंडार होती है
1: जी
0: जिसको स्टेम बोरर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, लेकिन अगर किसान भाई देखेंगे तो बीच वाला जो भाग होता है पत्ती का जो सिरा वो सूख जाता है, अगर उसको खींचेंगे तो उसमें अंदर एक बड़ी सी सुंडी
1: मिलेगा।
0: मिलेगी,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: इसको गोभ की गिटार बोलते हैं।
1: जी
0: इसके लिए बाजार में कारटाप हाइड्रोक्लोराइड
1: अच्छा
0: नाम से एक हरे रंग की दानेदार दवा आती है, ये रसायन का नाम है,
1: हाँ
0: अलग अलग नाम से बाजार में प्रचलित है। तो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड दवा को आप 15 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में खड़े पानी में डाल देंगे तो किसान भाई इससे निजात पाएंगे। एक और दवा है जिसका नाम है फिप्रोनिल,
1: जी
0: फिप्रोनिल के नाम से भी SC इसका फॉर्मुलेशन है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो फिप्रोनिल दवा से भी किसान भाई खड़े पानी में डालेंगे तो ये स्टेम बोरर या जो गोब की गिनार वाली समस्या है
1: जी
0: वो उनको देखने को नहीं मिलेगी।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और धान की फसल की देखभाल बदे जो आप जानकारी दें, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ भैया रानू,
1: हाँ हूँ सुमर भैया।
0: पंचहरे सुनन की भाई, धान के खेती में
1: हाँ,
0: फसल में का कुछ देखभाल के जरूरत बाटे भाई? खरीफ का राजा होत धान,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: धान
1: हाँ
0: के अगर देखे भाले रही हैं तो बहुत बढ़िया रहे।
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: साथे साथ भाई देखे रहा कि अगर खरपतवार हो, घास निकलत हो,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ओकर
1: हाँ
0: निकाई गुड़ाई करके या दवा के माध्यम से निकालत रहें तो फसल अच्छी चले।
1: हाँ हाँ हाँ
0: और एक बात ये हो कहा का कि देखा भाई, हम सब तो अपने तरफ से कहबे कही थे,
1: हाँ
0: मूल
1: हाँ
0: पंच छन का को सोचो बिचारत बाटे ना,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: ओका भी अपन वो सुझाव दे सकत हैं।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: यही अरदास, पंचन जा, अच्छा पंचो राम राम।
1: राम राम।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री

0: जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि नया विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं।
1: एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, पेपर लीक भी होता रहा। ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन, वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है।
0: उधर राज्यसभा ने भी राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करेगा। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से भाजपा द्वारा आज राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
2: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने भदोही का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास की जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेका। इस अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों तक रवाना की जाएगी। इस आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघी पूर्णिमा को संत रविदास जयंती तक चलेगी। प्रदेश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी, गोरखपुर, चित्रकूट, अयोध्या समेत प्रदेश की प्रमुख धार्मिक नगरियों में गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान और पूजन कर रहे हैं। कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान परिसर में आयोजित आषाढ़ पूर्णिमा समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ और विरासत स्थलों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
3: देश और प्रदेश की सरकार मिलकर के जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया गया है। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, वह भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअली उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित ये देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
4: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है।

0: और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे संभालेगा।
1: कल से शुरू हो रहे श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ में DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए ये व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए NCRTC ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नयाघाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
2: जो हमारा एक मानक संचालन प्रक्रिया हमारी तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ORS वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी। और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, स्नाते सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।
1: ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। श्री सिंह ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शानदार प्रदर्शन पर उनको बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की ये ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। वहीं बदायूं में गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है नया विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारम्भ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। कल से शुरू हो रहे श्रावण माह और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए व्यापक प्रबंध। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। और ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किस्सा गोई जो आधारित है कहानीकार यशपाल पर। स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर की। किस्सा गोई। हर एक दास्तां तुझसे शुरू होती है, हर एक किस्सा तेरे नाम पर तमाम हुआ।
4: दोस्तों, सुल्तान अख्तर साहब के इस खूबसूरत शेर के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर किस्सा गोई की सौगात लेकर। आप सभी को हमारा नमस्कार।
3: दोस्तों, किताबों के सफहों पर उकेरी न जाने कितनी ही कहानियां हमारे दिल के जज्बात की बयानियां बन कभी होठों पर मुस्कुराहटें लाती हैं तो कभी आंखों का पानी बन दिल की

0: जमी को भिगो जाती हैं।
1: यानी परत दर परत छुपे होते हैं जिनमें ऐसे अकस्माती मोड़ जो कभी नजरों को डगमगा देते हैं तो कभी दिल की धड़कनों को बढ़ाने का सबब बनते हैं।
0: वैसे फिलहाल अभी तो दिल की धड़कनों को बढ़ाने का सबब बनने को बेकरार हैं ये दिलकश गीत, जिसकी गुनगुनाहटों में छुपी हुई है कोई दिल फरेब दास्तां।

0: वाह, दिए और बाती के बिंबों के सहारे दिलों की किस्सा गोई करता ये गीत तो मन को छू ही गया।
1: देखिए पसंद किसकी थी
0: ये तो सही बात आपने कही है।
1: तो छू लेगी आज की वो कहानी भी जिसकी बयानी के लिए दिल असल में बेताब है।
0: वैसे दोस्तों हम समझ रहे हैं कि बेताबियां आप सबके भी उरूज पर होंगी, तो चलिए आज हम किस्सा गोई में जिस कहानीकार की कहानी लेकर आए हैं पहले उनसे आप सबको रूबरू करा दे, यानी बातें हिंदी के महान साहित्यकार यशपाल की।
1: दोस्तों हिंदी साहित्य जगत को अपने भावपूर्ण अर्थपरक और सशक्त लेखन से समृद्ध करने वाले सुविख्यात रचनाकार यशपाल यूं तो अपने उपन्यास विधा के लिए चर्चित हैं, लेकिन उनकी रची कहानियां जहनों दिल पर बड़ा गहरा असर डालती हैं।
0: पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, भस्मावृत, चिंगारी और फूलों का कुर्ता जैसे उनके कहानी संग्रह में छिपे वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य न केवल प्रभावकारी रूप से परिलक्षित होते हैं बल्कि एक नई सोच, नई दिशा की डोर भी हमें थमा जाते हैं।
1: आज हम भी अपने किस्सा गोई के इस अंक के माध्यम से आपसे साझा करेंगे यशपाल जी की एक बेहद मार्मिक कहानी
0: पर्दा।
1: चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी, एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब के जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपए का माहवार का

0: दर्जा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे, लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए उन्होंने आंखें मूंद ली।
1: इंशाल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी थी। चौधरी इलाहे बख्श डाकखाने में थे, उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी।
0: चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठ नैचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की टेढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता।
1: जहरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी।
0: तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए।
1: दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफा पाया, जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए।
0: चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या? स्कूल की फीस हर महीने और किताबों कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए।
1: चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्द ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था ही। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें न थी, चौकी पर बैठते खलम दवात का काम था।
0: 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपए था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे और बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते।
1: इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को भी कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते।
0: चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां

0: और बाद में दो लड़के।
1: दूसरी लड़की होने को थी तो वीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, दूसरा कोई भाई वालदा के फिक्र करने आया नहीं, वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी।
0: जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, सौ किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो, घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिलके नौकरी का कायदा पक्का होता है, हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है, कभी बहुत जरूरत पर ही मेहरबानी करते। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते, ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज के घर लौटने की संभावना ना रहती।
1: मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता, कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो तो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए।
0: मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ ना था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोरों को ना मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है, वो चोर जो ठहरा। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ ना रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वो पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक ना रह गया।
1: दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे, बाजार से ला टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था।
0: कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5ों औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता, पैजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पैजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे गिरवी रखने के लिए, घर में जब कुछ भी ना हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान।
1: रहने की जगह भर देखकर वह रुपए उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे।
0: बबर अली खान का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में

0: अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त ना मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रिड़ी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रिड़ी में बीच बचौवल भी करना पड़ा था। खान कुवे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी शरण लेनी पड़ी।
1: 4 आना रुपया, महीने पर 4 रुपए कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपए माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोएं खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया।
0: भादों में हालात और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पत्थे के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या धनिये की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया, नाहक इकलनी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले।
1: बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फांके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल कर सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई।
0: मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर काटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा।
1: 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वो 1.25 रुपए हाजिर करेगा। माहौल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। अमवतन चौड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया चोर देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा, समझा?
0: 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही सुबह बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए, इधर उधर की बातचीत

0: ईद पर वे कहते, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो दो एक रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी है। उत्तर मिला, मियां पैसे कहां इस जमाने में, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम।
1: दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा थोड़ी रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नई बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो हम उसका खाल उतार कर

0: भी होगा तो इस वक्त तक बैठा थोड़ी रहेगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नई बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम चार घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो हम उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है।
1: चार घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी,
0: चौधरी।
1: पीर बख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वे बिल्कुल निस्सत्त हो गए, हाथ पैर सुन और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेत न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था।
0: पैसा नहीं देने का वास्ता चिपता है।
1: एक से एक बढ़ती हुई तीन गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफी के लिए खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था,
0: पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, आम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी तो दो, हम ऐसे नाए जाएगा।
1: बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा, खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई। एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग हो गया।
0: आम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा, तुम्हारा खाल का क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो ये टाट अच्छा।
1: खान ने ड्योढ़ी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई, वो टकमगा कर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके एक तिहाई अंग ढकने में भी असमर्थ थे।
0: जाही भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानी से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल बिला कहा और असफल लौट गया।
1: भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस

0: भावना का अवलंब था वो मर चुकी थी।
1: इस कहानी को सुनते और सुनाते हुए मुझे एक बात लगी।
2: क्या?
1: वो ये लगी कि जरा देखिए, खान जो पंजाबी खान है, जो पैसे देता है, सूदखोर है, इसमें वो हर बार लोगों को गालियां देता और अपने पैसे वापस लेता, लेकिन उसके अंदर भी भाव तब जागृत हो गया जब उसने उस सच्चाई को देखा कि असल में पीर बख्श की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि शायद अब खुदा के सिवा कुछ भी उसके पास नहीं बचा।
2: सच में जो आप ये बात कह रही हैं, वो बात यशपाल जी ने खुद इस कहानी में भाव डालने की कोशिश की है कि मध्यवर्गीय जो हमारा ये समाज है, उसकी जो एक छोटी शान होती है, जब हम बहुत ज़बरदस्त आर्थिक तंगी से गुजर क्यों ना रहे हों, या बहुत संघर्ष हमारे जीवन में क्यों ना चल रहा हो, उसकी ये मार्मिक दास्तान ये पेश करती है कहानी, और ये दिखाती है कि कैसे दिखावे का आवरण इंसान को खोखला कर देता है। तो देखिए नेहा जी, हम दोस्तों से यही कहेंगे कि इस कहानी को सुनने के दौरान आपके मन में क्या कुछ चल रहा था, किन विचारों ने, सोचों ने जहन पर दस्तक दी, वो सब भी हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा अपने संदेश के माध्यम से।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं, और इसमें आप ज़रूर लिखिएगा कि इसमें आपकी रजामंदी शामिल है, तो हम आपकी कहानी अपने इस स्टूडियो से पढ़ेंगे और वो कहानी आप तक पहुंचेगी, है ना। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है
2: 8004926250। और नेहा जी, देखिए अब वक्त हो चला है विदा लेने का।
1: हाँ।
2: तो किस्सा गोई की इस महफिल से हम अपने दोस्तों से लेते हैं इजाजत।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किस्सा गोई, इसके अंतर्गत कहानीकार यशपाल पर बात हो रही थी। स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अगला प्रसारण बस थोड़ी देर में।

आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्म सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि

कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा।
इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंध

कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13 के 3 में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधा मोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधव राव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को 11:00 होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े

0: मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि ये एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मानसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। शुरुआत कर रहे हैं लगान फिल्म से उदित नारायण, आशा भोसले, वैशाली और साथियों की आवाज़ों में जावेद अख्तर के लिखे इस गीत से। संगीत है ए आर रहमान का।

चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में, और फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। शुरुआत कर रहे हैं नरेंद्र चंचल के स्वर में इस भक्ति रचना से।

तक ऐब मेरे, तक ऐब मेरे उत्ते पाई पर्दा, तैनु तेरी करीमी दा वास्ता जी। जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है, ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी। दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे, मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी। जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा, दिने राती नीर होवे, ओनु किदरे गरीब ना आख बैना, ओदे जेड ना कोई अमीर होवे, ओदे दर्दे गदावां दी की दसा, करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे, ओनी मंगदा तख्त ते ताज।

इस सूफी गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण होगा बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2

0: महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के

0: अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़

0: में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

0: कहा कि ये उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Dr. Singh criticized leader of the opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल्स को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
4: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल

0: इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा रहता है तो उसमें जो मॉइस्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमोस्फेयर में, और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपुर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल, अगर सीजन का मानसून सीजन जैसे जून टू सेप्टेम्बर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में, 50 साल में, तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड कर देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5 साल 10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इस समय हो रहा है तो ये कि ऐसा इमिडिएटली अगर एक दिन में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे। हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सेटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है, तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमिडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि यस इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट या राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा वो, थोड़े से थोड़े हमारा 2 घंटा 3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे, लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारा सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है, तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं, और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सैटेलाइट राडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है हमारा मॉडल, और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा पर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सारे कंबाइन अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
1: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में, जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है।
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है उस समय सबसे पहला तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं।

0: जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, कि टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना, तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी। और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं, तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहें। तो जो भी बारिश का समय होता है और आप पूरा चेतावनी आती है उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं, तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं, और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारा, जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब होते हैं, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बर्स्ट टाइप का इवेंट, जो आपको भी पता है कि एक घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटरशेड रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस, और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है, तो अगले 6 घंटे के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहां कहां ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी हुआ है, 250 बहुत जगह में ओडिशा के इंटीरियर ओडिशा में, तो हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम में हमने इंडिकेट किया था इसमें, जैसे कि अभी फिर छत्तीसगढ़ जाएगा। तो ये एक जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम है ये आपको कम टाइम में हमको जो वार्निंग है रेनफॉल को ट्रांसलेट करके, खाली रेनफॉल कितना होगा ये इतना सफिशिएंट नहीं, रेनफॉल जो होगा उसके बाद बाकी सॉयल मॉइस्चर को भी देखा जाएगा, बाकी उसका कितना ड्रेनेज में है, सॉयल मॉइस्चर का क्वालिटी है, अभी कितना वेट है, वो सब कंसीडर करके फ्लैश फ्लड। तो वही गाइडेंस जो हम दे रहे हैं ये

0: काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमिडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं। ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाएं। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में जैसे, उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफ़ी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फ़ायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है?
0: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे ही था उसमें, आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब राडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी, 400 किलोमीटर, इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में राडार जो है, कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है, जो कि ये हैवी रेनफॉल, जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए राडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो राडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने पता नाव कास्टिंग, तो ये राडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारे जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नाउकास्टिंग काफी हेल्पफुल।

0: पहले। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नाव कास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है तो राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने और भी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारे दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ये वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म में जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पॉपुलरिसिटी है इसमें के लिए भी बहुत ही उपयोग होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है, आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क और राडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गाँव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्से में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्ट्रॉम को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में है तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं, वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड बर्स्ट के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
0: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बेयर बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है। बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहाँ उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी चेतावनी दिए है। तो ये जो

एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा वो, जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए। तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई में ना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है। और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है। जून में हमारा 38% कम हुआ था, तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% थोड़ा सा कम हुआ है। जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी स्थिति आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली। लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे, जुलाई का एंड में अभी आ गया है, तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है।

0: है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है। जून में हमारा 38% कम हुआ था, तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, 1 जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी सीमित आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे। जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह, वो देते रहेंगे। एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं, तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री एज ए होल अगर देखेंगे, आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं। आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था। वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
2: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे धराली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है, तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाए। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं, वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं, तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उप क्षेत्र में ध्यान पूर्वक जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ भूस्खलन या भूधसाव की संभावना है, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय है।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारी मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति

0: जब अपनी रॉ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार।
6: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं शिप्रा श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बारिश हो रही है। बाहर आपने अगर झांक के देखा हो तो बहुत ही प्यारी सी बारिश हो रही है और इस बारिश में अगर आप ऑफिस से लौट रहे हैं भी गए हैं तो अपने प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले अपने आप को अच्छे से पोंछ लें, फिर हल्के से नहा लें, हल्के से अपने को भिगो लें और उसके बाद अच्छे से चेंज कर लीजिए। अच्छे से पोंछ करके, पूरी बॉडी अच्छे से पोंछ करके अच्छे से सूखे कपड़े पहन लें और फिर इसके बाद अदरक वाली प्यारी सी स्वादिष्ट सी चाय की चुस्की लेते हुए आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा और उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें कि आप अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें इस मौसम में और अपने अपनों का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है।

रात गहरा रही है और अंधेरा बढ़ रहा है। ऐसे में बारिश का होना एक चेतावनी है कि आप अंधकार के समय भी जागते रहें, अंतर्मन से चेतना में रहें, और चेतना में रहेंगे तभी परेशानियों के अंधकार से अपने को निकाल पाएंगे। श्रोताओ, बारिश बहुत ही अच्छी लगती है अगर दिन में होती है, अगर आप उसका आनंद ले सकते हैं, उनके दृश्य को अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन जब यही रात में होती है और आप नींद के आगोश में आने वाले होते हैं, तो फिर भी केयर की ज़रूरत है। क्या केयर? अगर आप अभी भी कराए हैं तो तुरंत रेनकोट निकालिए और उसको गाड़ी की डिक्की में डाल लीजिए, ताकि कल बेसबे अगर बारिश हो जाए तो आप अपने को भीगने से बचा सके। और उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और विटामिन सी का उपयोग अपने खाने में ज़रूर करें। अगर आप पैदल कहीं जाते हैं, अगर स्कूल के टीचर हैं, अगर ऑफिस से पैदल का रास्ता है, तो अपने पास अपने बैग में या अपनी गाड़ी में छाता ज़रूर रख लें। और गंदे पानी से ख़ुद को बचा के रखें। जहाँ भी सड़कों पे गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, कोशिश करें कि वहाँ से बच के निकले। और जब आप चाय पी रहे हैं तो चाय में थोड़ी सी प्रिकॉशनरी चीज़ें, मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, तुलसी का पत्ता और अदरक ज़रूर डालें, क्योंकि ये सारे

ये चीज़ें आपको ठंड लगने से बचा सकती हैं। भाई भीगना बुरा नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, अदरक वाली चाय पी लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसके दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। बातें मेरे पास अभी और भी हैं, आइए अब एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल सा म्यूजिकल ट्रैक।

अगर आप अपने अपनों को प्यार करते हैं, अपने अपनों की केयर करते हैं, तो कुछ प्रिकॉशंस अपने लाइफ में ज़रूर संभाल के रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि ये प्रिकॉशंस आपकी सुरक्षा तो करेंगे ही, साथ में अपने अपनों की भी सुरक्षा ज़रूर करेंगे। तो अगर बारिश शुरू हो गई है तो भाई अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को

को बंद कर लीजिए, घर के बाहर एक बार झांक लीजिए, तार पर कहीं आपने कपड़े तो नहीं डाल रखे हैं सूखने के लिए, क्या पता सूखने के बजाय वो फिर से गीले हो जाए और आपका काम बढ़ जाए। तो बारिश के मौसम में एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार जैसे ही बारिश शुरू होती है, छत पर, बारजों पर अगर आपने कपड़े फैला रखे हैं तो एक बार ज़रूर झांक लें कि कुछ कपड़े तो नहीं पड़े हैं, और अगर आपने कोई सामान किचन का सूखने के लिए डाल रखा है तो उसे भी अंदर करना बिल्कुल ना भूलें। और लाइट अचानक से चली जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, तो भाई आपका जब भी मौसम साफ नज़र आ रहा है तो अपना फ़ोन चार्ज करके रखें, पानी घरों में भर कर रखें, बर्तनों में पीने का पानी खासकर, और उसको बॉयल करके स्टोर कर लें, उसके बाद आप फ्रिज में रख करके पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जब आप अपने घर में हैं तो ये पानी की व्यवस्था और इन्वर्टर को चार्ज होने का टाइम दें, और अपने मोबाइल को चार्ज करके रखें, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको जब लाइट आ रही हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक चार्ज करके रखें। गीली चीज़ों को बिल्कुल भी, गीली चीज़ों को अगर संपर्क में हैं आप तो उस समय स्विचेस को छूने से बिल्कुल बचें, क्योंकि अर्थिंग आती है, करंट आ सकता है, और कभी-कभी फ्रिज में भी करंट आता है। तो बच्चों को ये बता के रखें कि वो ऐसे मौसम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फ्रिज, कूलर जैसी चीज़ों को टच करने से बचें, क्योंकि उसमें करंट आ जाता है। ये प्रिकॉशंस रखें, आपके बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न हंसते खेलते रहेंगे तो आपका मन भी हंसता खेलता और खुश रहेगा।

बारिश से बचाव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। घर में अगर आप हैं और बारिश हो रही है तो आप तेज बिल्कुल ना चलें, धीरे चलें, क्योंकि कहीं भी पानी की एक बूंद, दो चार बूंद भी गिरी है तो आप फिसल सकते हैं और संकट में पड़ सकते हैं। तो भाई ये लापरवाही बिल्कुल ना करें, सावधानी पूर्वक चलें, और अगर आप सड़क पर हैं तो अपने वाहन को बहुत धीरे चलाएं। इतने कंट्रोल में रखें कि अगर कोई गड्ढा, कोई ऊबड़ खाबड़ चीज़ें आ सकती हैं तो आप अपने को संभाल सकें। और अगर भरा हुआ पानी सड़क पर दिख रहा है तो वहाँ पर हो सके तो पैदल लेकर चलें। गड्ढा या पानी हो सकता है तो वहाँ पर आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। और ये ज़रूर देख लें, निगाहें दौड़ा लें कि कहीं कोई तार तो टूटा हुआ नहीं गिरा है। अगर तार टूटा हुआ गिरा है तो उससे बच के चलें, पानी से बच के चलें, थोड़ी देर ठहर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ जल्दी पहुँचने के चक्कर में खतरा मोल लें, क्योंकि आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, दुर्घटना से देरी भली। थोड़ी देर आप सब्र कर लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। थोड़ी देर में भी पहुंच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो भाई अपनी सुरक्षा रखें, तार, बिजली के तार को अवॉइड करते हुए चलें, और अगर बिजली गिरने का अंदेशा है, बिजली चमक रही है, तो आप पेड़ के नीचे भी बिल्कुल ना खड़े हों, क्योंकि जब तेज़ हवा, बारिश होती है तो पेड़ के गिरने का भी डर रहता है, तो पेड़ के नीचे भी ना खड़े हों। और चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, क्योंकि चलते चलते आप धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। फिलहाल आपके मन तक पहुंचा रहे हैं ये खूबसूरत सा नगमा जो आपके मन को सुकून देगा।

और आखिरी बात जो आपको बारिश से बचने के लिए याद रखनी है वो ये है कि बाहर का खाना खाने से बचें। आजकल जो फैशन चल गया ना हम लोगों का, कि एक क्लिक किया और ऑर्डर हो गया और खाना आपके दरवाजे पर, बिल्कुल भी ये ना करें। कोशिश करें कि घर में जो भी बना सकें गर्मा गर्म ताज़ा बना करके खा लें, क्योंकि इस बारिश में जो हमारे घर डिलीवरी करने आते हैं ना, उनको भी तो प्रॉब्लम होती है। मानवता के नाते उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और कटा हुआ फल बहुत देर तक रख करके बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको फल खाना है तो तुरंत ही काट करके खाएं। साग सब्जियों का परहेज़ करें, क्योंकि इस समय बारिश के मौसम में कहते हैं साग सब्जियों का परहेज़ करना चाहिए। और भाई बारिश जिस समय नहीं हो रही है, इस समय घर के ज़रूरी सामान ले आ करके रख लें, याद से लिस्ट बना करके रखें, और बारिश के समय बाहर निकलने से बचें। एक और बहुत ही ज़रूरी बात कि इस समय मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, तो आप अपने घर में हर समय गुड नाइट या कोयल, इस तरह की चीज़ें ला के रखें और उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। लास्ट में और बहुत ही ज़रूरी बात, कोई इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो एक नंबर, इमरजेंसी नंबर ज़रूर याद रखें, वो है 112। ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आपको मुसीबत के समय भी हेल्प प्राप्त हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपना ख्याल रखें और चलते चलते सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बने रहिए अपने रेडियो सेट के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं संगीता शंकर को। आइए सुनते हैं उनका वायलिन वादन। राग है बागीश्री। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है।

राग भाग्यश्री, कलाकार थी संगीता शंकर। तबले पर संगत कर रहे थे श्री महावीर प्रसाद भट्ट और तानपुरा पर थे श्रीयुत श्रीकांत वैश्य। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में

इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।